नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वाग रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। शुरू बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना। प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट, यानी कि मैं। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, यानी कि मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरे की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9 बजे हमारा स्वास्थ्य है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम समस्या समाधान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई रही हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच। आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: ये सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए।
1: आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं ना, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
4: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
5: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
4: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बुन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
4: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
4: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपणो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी जहां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज अमारे कार्यक्रम में आपते की बातचीत नु विषय है कि आपणे जे भाई बोन है ई मक्का नी खेती नी देखभाल हरते करे ने कई कई वात नु एना ने ध्यान राखवो होगा। तो आना विषय माते अमारी आपते की घणा कानी वात थायंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा आपणी वाते। तो भाई बोनो आप हांभळता रहेशो आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: વાઇન બોનુ ગીત તો આયુષ્યુ પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણી મન સ્વાગત કરો હો અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈ બોનુ અમે આપને ગીત કે પહેલા વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે મક્કાની દેખભાલ આપણે હરતે કરી શકો તો અણા વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થી જોડી રહી માંગીલાલજી. તો સૌથી કે પહેલા આપણે હમરી લેણાની વાતે અને મોરે કરા આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર જી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: જી ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કે આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈ ઓર ખેતી સે જુડી વિશેષ જાણકારી આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો દેતે હૈ. તો આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે મક્કા કી ફસલ કી દેખભાલ હમારે કિસાન ભાઈ બહેન કૈસે કરે.
1: જી તો જૈસે આપને બોલા મક્કા કી દેખભાલ કૈસે કરે તો એ બહોત અચ્છા વિષય હૈ ઓર વર્તમાન મેં અભી જો હમારે મક્કા જો કિસાન ભાઈ બો રહે હૈ ઉનકે લિયે ભી કાફી મહત્વપૂર્ણ હૈ. तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भी ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे मक्के की खेती है प्रमुख रूप से होती है और काफी मात्रा में हमारे यहाँ मक्का होती है. तो मक्का जो है केवल हम रोटी में उपयोग नहीं करते, उसके अलावा उसका दाल है, दलिया है या उसका भुट्टा है, उसको हम उपयोग करते हैं और बाजार में सेल करते हैं और हम खाते हैं. तो पोषण की दृष्टि से भी मक्का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है. तो देखिए अगर हम मक्का की बात करते हैं तो मक्का में कई प्रकार के रोग भी लग जाते हैं. इसके साथ में जो है जैसे उनकी वृद्धि कम हो जाना, रोग लग जाना, फिर पानी का प्रबंधन है वो कभी कभी हमसे सही से नहीं हो पाता है.
0: बिल्कुल.
1: तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका यहाँ पे ये हो जाता है कि आप जो अपना खेत है उसका निरीक्षण लगातार करें.
0: जी जी.
1: कम से कम जैसे आप अगर मक्का आपने बो दी है तो हफ्ता में दो बार आप खेत में जाएं, उसका निरीक्षण करें, उसको देखें कि कैसे वो वृद्धि हो रही है, पौधा कैसा है, किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है, उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ रही है. तो आप अगर हफ्ता में दो बार जाएंगे तो आपको नजर आएगा. इसके साथ में आप देखेंगे उसका रंग कैसा है, कहीं पीला तो नहीं हो रहा है, तो ये जो सारे लक्षण हैं वो आपको पता लगेंगे उसके निरीक्षण से.
0: बिल्कुल.
1: इसके साथ ही है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि फसलें पीली पड़ जाती है या सूखने लगती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, तो तुरंत इसका कारण जानने का प्रयास करें.
0: बिल्कुल.
1: और हम जो हमारे पास में जिस प्रकार का उपचार होता है, अगर इस तरह की कोई बीमारी अगर लग रही है तो वहाँ पे आप जो है जीवामृत है या आप दसपर्णी है, नीमास्त्र है, इनका उपयोग आप कर सकते हैं ताकि जो कीट है वो वहां से चले जाएंगे आपके खेत से.
0: जी जी.
1: तो ये जरूरी है. इसके साथ ही जब हम फसल बो देते हैं तो जब आप निराई गुड़ाई की हम बात करते हैं तो देखिए बुआई के 40-45 दिन एक तो महत्वपूर्ण होते हैं उस फसल के लिए. इस अवधि में क्या होता है कि खरपतवार जो है वो तेजी से बढ़ते हैं.
0: बिल्कुल.
1: और सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा उनके ऊपर पड़ता है तो उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है मक्का और खरपतवार में.
0: बिल्कुल.
1: तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने 20-25 दिन हो गए बुआई के तो आप पहले अपने खेत में जाके देखिए किस प्रकार का खरपतवार है और क्या क्या चीजें उग रही है उसमें. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपकी निराई गुड़ाई बहुत महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि अगर हम खरपतवार नहीं निकालेंगे तो आपकी फसल की वृद्धि है वो रुक जाएगी.
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा. जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि मक्का की फसल की देखभाल क्यों जरूरी है, जिसमें आपने हमें बताया कि फसल का नियमित निरीक्षण करना है, समय पर निराई गुड़ाई करनी है, यही सर संतुलित पोषण किस तरीके से उपलब्ध हम करा सकते हैं?
1: देखिए हमारे पास में सबसे बढ़िया स्रोत ये है संतुलित पोषण की हम बात करें तो हमारे पास में गोबर खाद है.
0: बिल्कुल.
1: कई किसान भाइयों के पास में वर्मी कम्पोस्ट होगा, किसी के पास जीव अमृत है या फिर आपका जो उकेड़ा का खाद है. तो ये जो खाद्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे फसल के लिए और ये उर्वरकता है मिट्टी की बहुत अच्छे से बढ़ाती है.
0: जी जी.
1: जिसके कारण आपकी जो फसल है वो बेहतर होगी, उसकी वृद्धि भी बेहतर होगी और आपकी पैदावार भी बेहतर होगी.
0: जी जी.
1: तो पोषण का अगर हम बात करें संतुलन की तो हमें गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए. अब वो आप बली से उसको आप कंपोस्ट किया हुआ हो या वो केड़ा से हो या फिर आपके पास में अगर वर्मी कंपोस्ट है आपने बना रखा है तो उसका उपयोग करें तो आपको काफी अच्छा पोषण मिलेगा.
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा.
1: तो इसके साथ में ही हम देखेंगे कि कभी कभी क्या कि खाद अगर नहीं होता है तो पत्तियां हल्की पीली दिखाई देती है, उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है और आप देखोगे तो कमजोर पौधा नजर आएगा.
0: बिल्कुल.
1: अगर ऐसी स्थितियां आपकी नजरों में आती है या आप खेत में देखते हैं तो आप तुरंत है जो खाद का उपयोग करें जो देसी खाद है जिसकी हम बात करते हैं, हम परंपराओं से डालते जो आ रहे हैं वही, हमें किसी प्रकार का जो यूरिया डीएपी इस प्रकार का खाद यूज नहीं करना है, क्योंकि हम खेत में जो पैदा होगी उसको हम खाएंगे और हम खाएंगे तो आपको रासायनिक जो है उसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: आपकी जो फसल है उसके अंदर पोषण बहुत अच्छा होगा, तो इस चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है इसको आप सिर्फ निरीक्षण से पता कर सकते हैं।
0: जी जी,
1: ऐसा नहीं हो कि आपने बो दी और आप 2 महीने बाद में आप जा रहे हो देखने, तो फिर वो ज्यादा प्रभावित हो जाती है।
0: जी बिल्कुल सर,
1: तो इस तरह से हमें ध्यान देने की जरूरत है।
0: जी हाँ सर, आपने सही कहा, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। यही अब बात आती है कि पौधों की जड़ों पर किस तरीके से हमें मिट्टी चढ़ानी है, जल संरक्षण कैसे करना है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: देखिए, जल संरक्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपकी फसल के लिए। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे नजर आएगा आपको कि बारिश के दिन है, लेकिन कभी क्या होता है कि बारिश लंबे समय तक नहीं आती है।
0: बिल्कुल,
1: तो नहीं आती है तो आपको ये देखने की जरूरत है कि फसल को पानी की आवश्यकता है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपकी मक्का है, पर्याप्त अगर वर्षा है टाइम से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी देखना है कि एक तो खेत का पानी कहीं बहकर तो नहीं निकल रहा है, तो आप वहाँ पे मेड़बंदी जैसे उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये ध्यान रखिए कि बहके नहीं निकले, अगर बहता है तो ये समझ लीजिए कि आपका जो मिट्टी की उर्वरकता है वो भी उसके साथ बह जाती है।
0: जी जी,
1: तो फसल कमजोर होना

0: वो आपके लिए नुकसान भी हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: इसके साथ में हम देखते हैं कि पानी की आवश्यकता पता कैसे करें, तो आपकी जो मिट्टी की जो नमी है आप उसको चेक करते रहें। जब भी आप खेत में जाएं तो उसकी नमी को चेक करते हैं कि कितनी गहराई तक नमी है या कितनी गहराई तक नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, उस दौरान आप जो है सुनिश्चित कर सकते हैं कि पानी देना है या नहीं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें बहुत अच्छी बातों से अवगत करवा रहे हैं, तो और कौन सी विशेष बातों का हमारे किसान भाई बहनों को मक्का की फसल में ध्यान रखने की जरूरत है?
0: जी, तो एक तो जैसे हमने पहले भी बात की कि जो कीट है, वो कीट जो आपकी फसल में लग जाते हैं या अन्य कोई रोग है, तो हमें क्या करना है कि समय समय पर उनको देखते रहना है। देखकर आपको जो हम नीम आधारित जो घोल बनाते हैं, हम नीम अस्त्र की बात करते हैं, दसपर्णी है, तो इन चीजों का उपयोग हमें करना चाहिए ताकि कीड़े हैं वो वहां से चले जाएंगे आपके खेत से, तो ये जरूरी है। दूसरा है कि जैसे अगर मान लो कि पानी से या फिर आपकी जो गहराई में कम है, जैसे आप शुरुआत में देखते हैं तो मक्का की अगर जड़ें गहराई में नहीं है, बाहर निकल रही है, तो आप शुरुआत में ये भी देख सकते हैं कि वहां पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दें तो आपका पौधा है मजबूत रहेगा। और जैसे कई बार क्या होता है कि पौधे बड़े हो जाते हैं और हवा चलती तो पौधे गिर जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसी स्थिति में अगर आप मिट्टी डालते हैं तो वो आपका पौधा खड़ा रहेगा। इसी तरह जैसे हमने बात की थी कि मेड़बंदी आप कर सकते हैं ताकि आपका खाद और जो मिट्टी की उर्वरकता है वो बहकर नहीं जाए। इसके अलावा ये है कि कई किसान भाई इस दौर में अभी शुरुआत है हमारी बोने की, कई भाइयों ने बो भी दिया, किसी ने बुआई करेंगे, तो ये देखना है कि हमको हांगणी खेती की तरह उसको करना है।
1: बिल्कुल,
0: केवल मक्का मक्का नहीं लगाना है उसमें, आप जैसे अरहर है या तुअर है, उड़द है, मूंग है, भिंडी है, तो इस तरह के अगर चार पांच प्रकार के आप लगाएंगे तो इसमें ये फायदा रहेगा कि आगे जाकर आपको एक तो विभिन्न प्रकार की फसलें मिलेगी, दूसरा आपको वहां से दाल की फसलें, दाल मिल जाएगी, खाने के लिए अनाज मिलेगा, और भी जो है आप सब्जियों के, जैसे भिंडी की बात करते हैं तो आप मेड़ के चारों तरफ भिंडी लगा सकते हो, तो उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और दूसरा रोग लगने की कम संभावना होती है उसमें।
1: बिल्कुल सर,
0: तो उसमें क्या होता है कि अनेक प्रकार की फसल है तो वो जो कीट है वो बहुत कम लगेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि एक ही फसल पे वो निर्भर हो जाते हैं और वो उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाते, तो दोनों तरीके से होते हैं। जैसे हम बोलते हैं शत्रु और मित्र कीट, तो दोनों होते हैं। तो अगर शत्रु कीट है तो आप दसपर्णी और ये जो जीवामृत की हम बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं नीमास्त्र की, वो आप जरूर छिड़के ताकि वो नुकसान ना करे।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सभी श्रोतागणों को ये संदेश देना चाहूंगा कि मक्का की जो अच्छी देखभाल है वो उत्पादन का माध्यम भी है, तो आप अच्छे से देखभाल करें, समय समय पर आप खेत में जाएं और उसको बारीकी से उसका निरीक्षण करके, और जो भी प्रकार की जैसे खरपतवार है या रोग है तो उसके लिए आप जो है परंपरागत जो समाधान है वो खोजें और करते रहे ताकि आपकी फसल है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और पैदावार भी अच्छी हो।
1: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: जेम की भाई बोनो अवड़े अपने वेस्ट में मांगीलाल जी सर जुड़े तक होता ने एने अपने घनी असल तरीकत की घना कनी बातें बताड़ी है, तो जेम की एने अपने बताड़ियो कि अपने टेम टेम माते खेतर में जाइने निरीक्षण करवो होगा, देखवो होगा कि अपने मक्का की फसल हरते थी रही है, कितनी मोटी थी है, कि कीट तो नहीं लगी गया, एना प्रबंधन अपना हरते करवो पड़ेगा, ने एने साथे जैविक कीटनाशक नो प्रयोग अपने हेते करवो है, ने आनु हो महत्व है ई भी एने अपना बताड़ियो। तो आशा करो हो कि आ हंगरी बाते आपने गमी होंगा। केम की भाई बोनो अवे टाइम थी गयो है अपने अणस कार्यक्रम तकी सूटा पड़वानो, तो सूटा तो पड़ा पण साथे पहले अपने हमरा विदा एक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

भाइनो बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन के माध्यम से हम जब भी हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे एक नए प्रेरणादायक विषय को लेकर बातचीत रहती है। तो आज भी श्रोता साथियों हम ऐसे ही विषय को लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारे आपसे बातें रहने वाली है पौधों और पर्यावरण को लेकर। श्रोता साथियों, कहा जाता है कि प्रकृति हमें जीवन देती है और हम पर भी यह जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा करें। धरती, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु ये सभी हमारे जीवन के अभिन्न साथी है। साथियों, यदि इसमें से कोई भी एक भी कमजोर पड़ जाए तो हम देखते हैं कि जीवन का संतुलन है वो बिगड़ सकता है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, कहीं जंगल कम हो रहे हैं, कहीं नदियां प्रदूषित हो रही हैं, तो कहीं बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे समय में श्रोता साथियों सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस धरती को सुरक्षित कौन रखेगा। श्रोता साथियों, इसका सबसे सुंदर उत्तर है हमारे बच्चे। बच्चों के मन यदि बचपन से ही पेड़ों, पौधों, जल, मिट्टी और प्रकृति के प्रति प्रेम विकसित हो जाए तो वे बड़े होकर ऐसे नागरिक बनेंगे जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए सोचेंगे। जी हाँ श्रोता साथियों, एक बच्चा जब एक पौधा लगाता है, उसकी देखभाल करता है, पानी बचाता है, प्लास्टिक का कम उपयोग करता है या किसी पेड़ को काटने से बचाने की कोशिश करता है, तब श्रोता साथियों वह केवल एक छोटा सा काम नहीं करता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करता है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे इस विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं पौधे और पर्यावरण को लेकर। किस प्रकार हमारे बच्चे हैं वो पौधे और पर्यावरण के दोस्त हैं। तो श्रोता साथियों, मैंने आपसे कहा था कार्यक्रम के माध्यम से कि प्रकृति हमें जीवन देती है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें। पर श्रोता साथियों, हम इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? इसके सबसे बड़ी भूमिका हमारे बच्चे हैं, वो इसमें निभा सकते हैं। श्रोता साथियों, आज का यह नाटक

0: हमें यह संदेश देता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या बड़े लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे घर के जो बच्चे हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आरती और पूजा के बीच एक प्रेरणादायक संवाद को।
1: अरे आरती, तुम रोज रोज इन पौधों के पीछे क्यों लगी रहती हो? छुट्टी का समय है, चलो खेलते हैं।
2: अरे पूजा, खेलेंगे भी, लेकिन पहले इन पौधों को पानी तो दे दूं। दो दिन से बारिश नहीं हुई है यार, अगर इन्हें समय पर पानी नहीं मिलेगा तो ये सूख सकते हैं।
1: अरे दो चार पौधे सूख भी गए तो क्या ही फर्क पड़ेगा आरती?
2: फर्क पड़ता है पूजा, बहुत फर्क पड़ता है। एक पौधा केवल पौधा नहीं होता, वह भविष्य का एक बड़ा पेड़ होता है, जो हमें ऑक्सीजन भी देता है, छाया भी देता है और पशु पक्षियों को घर भी देता है। साथ ही तुम्हें पता है कि एक पौधा जब पेड़ बनता है तो यह पर्यावरण को संतुलित भी रखता है।
1: अच्छा, मैंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं।
2: हाँ, अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। हम पेड़ का महत्व तब समझते हैं जब गर्मी में छाया नहीं मिलती या बारिश कम होने लगती है।
1: लेकिन आरती, इतने सारे पेड़ तो है पहले से।
2: पहले थे पूजा, लेकिन हर साल लाखों पेड़ हम देख रहे हैं कि काटे भी जा रहे हैं। अगर नए पौधे नहीं लगाए जाएंगे तो आने वाले समय में हरियाली कम होती जाएगी ना।
1: बात तो तुम्हारी सही है।
2: हाँ, और सोचो कि अगर बच्चा साल में केवल एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो हमारा गांव, हमारा शहर और हमारा पूरा देश कितना हरा भरा हो सकता है ना।
1: ये बात तो बहुत अच्छी है।
2: हाँ पूजा, क्या तुम्हें पता है पेड़ केवल हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि मिट्टी को भी बचाते हैं।
1: अच्छा, मिट्टी को कैसे बचाते हैं?
2: पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती है, इससे बारिश के समय मिट्टी बह कर नहीं जाती।
1: ओह, मुझे तो यह भी नहीं पता था।
2: हाँ, इसलिए पेड़ धरती के सच्चे रक्षक माने जाते हैं।
1: अच्छा, तो हम बच्चे और क्या कर सकते हैं?
2: बहुत कुछ कर सकते हैं पूजा, जैसे कि सबसे पहले तो हम पौधे लगा सकते हैं, रोज उनकी देखभाल कर सकते हैं, पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग कर सकते हैं, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालेंगे, दूसरों को भी पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
1: अच्छा, इतने छोटे छोटे काम भी पर्यावरण बचा सकते हैं क्या?
2: बिल्कुल बचा सकते हैं, क्योंकि बड़े बदलावों की शुरुआत छोटे प्रयासों से ही होती है।
1: अब मुझे समझ आया कि पर्यावरण की रक्षा केवल किताबों का विषय नहीं है।
2: हाँ बिल्कुल, ये हमारे जीवन का सबसे जरूरी विषय है।
1: आरती, एक बात बताओ कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो पक्षी कहाँ रहेंगे?
2: हाँ, तुमने सही कहा, अगर पेड़ नहीं होंगे तो पक्षी के पास घर नहीं रहेगा, और अगर पक्षी नहीं होंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा।
1: अगर पानी खत्म हो गया तो जीवन भी मुश्किल हो जाएगा ना?
2: हाँ बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें आज से ही प्रकृति का सम्मान करना चाहिए।
1: आरती, आज से मैं भी मेरे हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाऊंगी।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा संकल्प है तुम्हारा।
1: और मैं अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित करूंगी।
2: हाँ बिल्कुल करना, यही तो असली पर्यावरण मित्र की पहचान है।
1: आज मुझे समझ आ गया आरती कि धरती हमारी नहीं बल्कि हम धरती के हैं।
2: हाँ, और हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है ना?
1: और अब मैं कभी किसी पौधे को नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगी,
2: और मैं भी हर साल नए पौधे लगाकर उनकी देखभाल भी करूंगी।
3: आओ मिलकर ये प्रण करें, हरियाली से धरती भरें।
0: तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमने आरती और पूजा के बीच का एक प्रेरणादायक संवाद सुना। हमने देखा कि किस प्रकार हमारे बच्चे हैं वो पर्यावरण और पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। जी हाँ श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि बच्चे केवल देश का भविष्य नहीं होते, बल्कि पर्यावरण के सबसे सच्चे मित्र भी बन सकते हैं। यदि बचपन से ही उनके मन में प्रकृति के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी, संवेदनशीलता का बीज बोया जाए तो यही बीज आगे चलकर हरे भरे, स्वच्छ और स्वस्थ समाज का विशाल वृक्ष बनेगा। पर्यावरण की रक्षा केवल एक अभियान नहीं है साथियों, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। एक पौधा लगाना, उसे जीवित रखना, पानी की एक एक बूंद बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन लाते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों कि हम पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लेते बल्कि अपने बच्चों से उधार लेते हैं। इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित वातावरण दें। तो आइए श्रोता साथियों, आज हम यह संकल्प लें कि हर बच्चा बनेगा पर्यावरण का प्रहरी, हर घर लगाएगा एक पौधा, हर गांव और हर शहर हरियाली की नई पहचान बनेगा। तो श्रोता साथियों, इन्हीं प्रेरणादायक बातों के साथ में आज के इस कार्यक्रम से मैं विदा लेती हूँ, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारे आपसे जो भी बातें रही, नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसके साथ श्रोता साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथ ही श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।
1: चिक तक, चिक तक, चिक तक, चिक तक।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
5: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कशिश, युवा और वृक्षारोपण, भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर।
0: बिल्कुल जी हाँ जागृति जी, क्योंकि आज का ये जो हमारा विषय है वो केवल पर्यावरण की सुरक्षा का नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि हमारे भविष्य के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारा बातचीत का विषय है युवाओं और वृक्षारोपण, भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर।
1: बिल्कुल कशिश,
0: तो इस विषय को लेकर आज हम श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बातें ढेर सारी करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथियों को पता है कि हम उन्हें शुरुआत में पहले एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना आज भी शुरुआत में ही दोस्तों को पहले यहाँ मनोरंजन करवा दे।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि कशिश हमने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं युवा और वृक्षारोपण भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर।
1: जी हाँ,
0: तो श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे कि हम सब देखते हैं कि आज का युग विकास, विज्ञान और तकनीक का युग है।
1: बिल्कुल,
0: मनुष्य ने प्रगति के बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन इस विकास के दौर में प्रकृति को बहुत भारी नुकसान भी पहुंचा है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अनियमित वर्षा हो रही है, बढ़ता तापमान मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का साधन नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि मानव अस्तित्व को बचाने का अभियान भी है।
1: बिल्कुल,
0: वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, वायु देते हैं, छाया, फल, औषधि और जीवन प्रदान करते हैं। इसीलिए आज वृक्षारोपण की जिम्मेदारी विशेष रूप से युवाओं के कंधों पर है, क्योंकि हम ही भविष्य के निर्माता है श्रोता साथियों। वृक्ष पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य का आधार भी है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। साथियों, हम देखते हैं कि आज शहरों का विस्तार तेजी से हो रहा है। नई सड़कें, भवन, उद्योग और अन्य विकास के कार्यों के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: जिसका परिणाम श्रोता साथियों हमारे सामने ये है कि जंगलों का क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है। इसके कारण तापमान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, अनियमित वर्षा हो रही है और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में जागृति जी, गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान के लिए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कई क्षेत्रों में जल संकट गंभीर होता जा रहा है और वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधित बीमारियां भी बढ़ रही है। और इन सभी समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण है वृक्षों की कमी।
0: बिल्कुल
1: साथियों, ऐसी स्थिति में वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय माना जा सकता है। जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनके पास ऊर्जा, उत्साह, नवीन सोच और परिवर्तन लाने की क्षमता होती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, जिस प्रकार हम युवा देश के विकास में योगदान देते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण में भी हमें अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण रखना होगा।
1: जी जी,
0: यदि हम युवा वृक्षारोपण को अपना सामाजिक दायित्व समझ लेंगे कशिश, तो देश में हरियाली की नई क्रांति आ सकती है। आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, शिक्षा संस्थानों और कई अभियानों के माध्यम से युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: अनेक युवा संगठन गांव और शहरों में पौधारोपण अभियान चला रहे हैं। ये सकारात्मक पहल न केवल पर्यावरण को बचाने में सहायक है, बल्कि समाज को भी प्रेरित कर रही है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ दोस्तों, वृक्षारोपण केवल पौधा लगाना नहीं होता, यानी कि कहने का मतलब यही है कि अक्सर लोग किसी विशेष अवसर पर पौधा लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। जी, लेकिन वास्तविक वृक्षारोपण का मतलब है पौधे को पेड़ बनने तक उसकी देखभाल करना। श्रोता साथियों, पौधे को नियमित पानी देना, पशुओं से बचाना, उचित खाद देना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि यदि लगाए गए पौधों की देखभाल नहीं की जाए तो उनका जीवित रहना थोड़ा कठिन हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: जी, इसलिए हमारे युवा साथियों को केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उनके संरक्षण का संकल्प भी लेना है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि वृक्ष प्रकृति की अमूल्य धरोहर है और इनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये वायु प्रदूषण को कम करते हैं, जल संरक्षण में सहायता करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वृक्ष वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको ये कहना चाहेंगे कि भविष्य उन्हीं का होता है जो आज उसे बनाने का प्रयास करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पर्यावरण में जो पर्यावरणीय संकट दिखाई दे रहा है कशिश, उनका प्रभाव सबसे अधिक आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम यही बातें बताते हैं, इसीलिए श्रोता साथियों, हम युवाओं का कर्तव्य है कि हम आज से ही प्रकृति का संरक्षण सही दिशा में लगाए। यदि युवा वृक्षारोपण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना ले तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार संभव है कशिश।
1: बिल्कुल,
0: प्रत्येक युवा यदि हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो करोड़ों वृक्ष तैयार हो सकते हैं। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी स्वस्थ जीवन मिलेगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं और आगे हम जानेंगे कि वृक्षारोपण और स्वास्थ्य का क्या संबंध है।
0: बिल्कुल,
1: तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,
1: तो युवा साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है श्रोता साथियों, वृक्षारोपण भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर, और गीत से पहले हम ढेर सारी बातें जान पाए थे कि हमारे युवा साथियों को समझने की आवश्यकता है कि वृक्षारोपण करना कितना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर बात करें भविष्य की जिम्मेदारी की, तो देखते हैं कि भविष्य केवल सरकारों या फिर पर्यावरण विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये हम सभी की जिम्मेदारी है, और विशेषकर हमारे युवा साथियों की, क्योंकि आने वाले वर्षों में जो पर्यावरण हमें मिलेगा दोस्तों, वह आज किए गए कार्यों पर ही निर्भर करता है। यदि आज हम वृक्ष लगाएंगे तो भविष्य में हमें स्वच्छ हवा, पर्याप्त जल और स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त होगा। जागृति जी,
1: बिल्कुल।
0: वहीं इसके विपरीत यदि हम आज लापरवाह बने रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर पर्यावरणीय संकटों का सामना करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि युवा केवल स्वयं वृक्ष लगाकर ही नहीं बल्कि दूसरों को प्रेरित करके भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वे गांव-गांव और शहर-शहर जागरूकता अभियान चला सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी फैला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज अनेक राज्यों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: करोड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं। श्रोता साथियों, ये दर्शाता है कि यदि समाज और युवा मिलकर प्रयास करेंगे तो हरित भारत का सपना साकार हो सकता है।
0: जी जी,
1: हम आपसे कहना चाहेंगे कि वृक्ष केवल पर्यावरण नहीं बचाते बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। वृक्षों से फल, लकड़ी और हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है।
0: बिल्कुल,
1: ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लाखों लोगों की आजीविका भी वनों पर ही निर्भर करती है। कशिश, वृक्ष रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं और प्राकृतिक संसाधन की रक्षा भी करते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोताओं, हरित वातावरण लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, मानसिक तनाव कम करता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि अगर वृक्ष बचेंगे तो हमारा जीवन सजेगा, और अगर हमारा जीवन सजेगा तो हर घर खुशियों से भर जाएगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर वृक्षारोपण और स्वास्थ्य को लेकर हम बात करें तो स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण जरूरी होता है, ये हम सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में वृक्ष जो है वो वायु को शुद्ध बनाते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। साथ ही दोस्तों, जो आसपास हमारी हरियाली होती है वो मानसिक तनाव को कम करती है और हमारे मन को भी शांति प्रदान करती है।
1: जी हाँ,
0: देखते हैं कि शोधों से ये स्पष्ट हुआ है कि हरित वातावरण में रहने वाले लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसलिए वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं है बल्कि स्वस्थ समाज निर्माण का भी आधार है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं जागृति जी कि वृक्षारोपण को हमें जन आंदोलन बनाना होगा। विद्यालय, महाविद्यालय, युवा मंडल, स्वयंसेवी संगठन और यहाँ तक कि अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को हमें इसके लिए प्रति जागरूक करना होगा।
1: जी हाँ,
0: हमें श्रोता साथियों, प्रत्येक गांव शहर में नियमित रूप से वृक्षारोपण अभियान चलाने होंगे। जन्मदिन, विवाह, अन्य विशेष अवसरों पर पौधे लगाने की परंपरा विकसित करनी होगी। इससे समाज में जागृति जी पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित जरूर होगी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा राष्ट्र की शक्ति है और वृक्ष पृथ्वी की शक्ति है। जब ये दोनों मिल जाते हैं कशिश, तो एक सुरक्षित, स्वच्छ और समृद्ध भविष्य का निर्माण होता है।
0: बिल्कुल,
1: आज आवश्यकता केवल पौधे लगाने की नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक संभालने की भी है। प्रत्येक युवा को ये संकल्प लेना होगा कि वो अपने जीवन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए और दूसरों को प्रेरित करे। धरती हमें जीवन देती है, इसलिए उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। यदि आज हम वृक्षारोपण को अपनी जिम्मेदारी बना लेंगे कशिश, तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देगी।
0: जी हाँ,
1: भविष्य की सुरक्षा किसी सरकार या संस्था की अकेली नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से युवाओं का दायित्व है।
0: बिल्कुल,
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि याद रखिए, भविष्य किताबों में नहीं लिखा होता, उसे कर्मों से बनाया जाता है। आज लगाया गया एक छोटा सा पौधा कल किसी बच्चे को शुद्ध हवा देगा, किसी राहगीर को छाया देगा और इस धरती को जीवन देगा। इसीलिए हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वृक्ष लगाएं, क्योंकि कहा गया है कि हर युवा को यही सपना सजाना चाहिए कि हरियाली से हमारा देश सजे, एक पौधा आज लगाए और सुरक्षित भविष्य पाए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और अब हम देख रहे हैं

0: हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं एक और गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वृक्षारोपण और युवा साथी को लेकर, ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप जरूर अपने राय सुझाव हम तक पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातचीत रहने वाली है सामूहिक प्रयास की शक्ति मिलकर बदले अपना गांव। श्रोताओं कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति एक दीपक जला सकता है, लेकिन जब पूरा गांव मिलकर आगे बढ़ता है तो विकास की ऐसी रोशनी फैलती है जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: गांव केवल मकानों का समूह नहीं होता, बल्कि लोगों के सहयोग, विश्वास और साझी जिम्मेदारियों से बनता है। जब हर व्यक्ति सोचने लगे कि गांव की समस्या मेरी समस्या है और उसका समाधान मेरी भी जिम्मेदारी है, तभी सच्चे विकास का मार्ग खुलता है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसी विचार के साथ आज हम बात करेंगे सामूहिक प्रयास की शक्ति मिलकर बदले अपने गांव को। तो ये बातें हम जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं सामूहिक प्रयास की शक्ति मिलकर बदले अपने गांव को। तो अंजलि, इतिहास गवाह है कि जब लोगों ने मिलकर काम किया है तब बड़े से बड़े बदलाव संभव हुए हैं।
1: जी जी।
0: एक व्यक्ति अकेले बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन जब पूरा समुदाय एक लक्ष्य के लिए खड़ा हो जाता है तब परिवर्तन की नई इबारत लिखी जाती है। गांव का विकास भी किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। श्रोताओं,
1: बिल्कुल,
0: इसके लिए पूरे समाज की भागीदारी जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, एक पुरानी कहावत है, एक और एक 11 होते हैं। यह केवल कहावत नहीं है बल्कि जीवन का एक बड़ा सत्य है।
0: बिल्कुल,
1: एक व्यक्ति अकेले कुछ सीमित कार्य कर सकता है, लेकिन जब अनेक लोग एक लक्ष्य, एक सोच और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो असंभव दिखाई देने वाला कार्य भी संभव हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: यही सामूहिक प्रयास की शक्ति है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव भारत की आत्मा है। हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, खेती, लोक कला और सामाजिक मूल्यों की जड़ें गांव में ही बसती हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि जागृति जी गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। लेकिन गांवों का विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं होगा, इसके लिए गांव के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि गांव केवल घरों का समूह नहीं होता, ये संस्कारों, परंपराओं, रिश्तों, सामूहिक जिम्मेदारियों का केंद्र होता है। जैसा कि अभी आपने बताया भी था, यदि गांव का प्रत्येक व्यक्ति सोच ले कि मेरे गांव की प्रगति मेरा भी योगदान है तो विकास की गति कई गुना बढ़ सकती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, सामूहिक प्रयास का मतलब यानी कि मिलजुल कर सहयोग करना, समर्पण के साथ किसी साझा उद्देश्य को पूरा करना। ये भावना हमें सिखाती है अंजलि कि समाज की समस्या केवल किसी एक की नहीं बल्कि हम सभी की है, इसीलिए उनके समाधान में भी सबकी भागीदारी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज हम अक्सर विकास की बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में अच्छी सड़कें हो, स्वच्छ वातावरण हो, पर्याप्त पानी हो और बेहतर शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, रोजगार के अवसर भी बढ़े।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोता साथियों, हमें ये भी समझना होगा कि विकास केवल मांगने से नहीं आता है, विकास के लिए भागीदारी भी जरूरी होती है। सामूहिक प्रयास का अर्थ, जैसा कि जागृति जी आपने भी बताया था, कि गांव का हर व्यक्ति अपने गांव के प्रति जिम्मेदारी महसूस करे। जब लोग यह सोचते हैं कि यह मेरा गांव है और इसकी उन्नति में भी मेरा ही योगदान होना चाहिए, तभी गांव के बदलाव की शुरुआत होती है।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा स्वराज भी यही सिखाता है कि केवल अधिकारों की बात न करें बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझें। स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मनिर्भरता, सहभागिता और जिम्मेदारी है। जब जागृति जी जनता स्वयं विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनती है तब स्वराज मजबूत होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज के समय में गांव बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कहीं पानी की कमी है, कभी स्वच्छता की समस्या है, कहीं बेरोजगारी है, तो कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन समस्याओं का स्थायी समाधान तभी संभव है जब पूरा गांव मिलकर आगे आएगा। सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का नाम नहीं है श्रोताओं, बल्कि सच्चा स्वराज वो स्थिति है जहां लोग स्वयं अपने विकास की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। जब नागरिक केवल अधिकारों की बात नहीं करते बल्कि कर्तव्यों का भी पालन करते हैं, तभी स्वराज का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि किसी भी गाँव का विकास पंचायत भवन या सरकारी योजनाओं से नहीं होता। विकास तब होता है जब गांव का हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझता है।
1: बिल्कुल,
0: जब किसान, मजदूर, शिक्षक, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग के साथ मिलकर कार्य करते हैं तब परिवर्तन की मजबूत नींव तैयार होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि किसी भी गांव की सबसे बड़ी पूंजी उसके लोग होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि लोग जागरूक, एकजुट और सकारात्मक सोच वाले हों तो सीमित संसाधनों में भी बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। लेकिन यदि जागृति जी समाज बिखरा हुआ हो, आपसी मतभेद उलझे हों, तो हम देखते हैं कि अच्छे संसाधन भी विकास नहीं ला सकते।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए दोस्तों आज हमें अपने गांव में सहयोग, सहभागिता की संस्कृति को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि गांव की समस्या किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है बल्कि पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, सामूहिक प्रयास की शक्ति मिलकर बदले अपने गाँव को, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, हमने गीत से पहले जाना था कि आज हमें अपने गांव में सहयोग और सहभागिता की संस्कृति को मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि दोस्तों गांव में गंदगी है तो इसका प्रभाव हर परिवार पर पड़ता है। यदि पानी की कमी है तो उसका असर सभी पर होता है, और यदि शिक्षा कमजोर है तो पूरा समाज पीछे रह जाता है। इसलिए समाधान भी सामूहिक ही होना चाहिए। स्वच्छता इसका एक अच्छा उदाहरण है। यदि केवल कुछ लोग सफाई रखें, बाकी लोग लापरवाही करें, तो गांव स्वच्छ नहीं बन सकता। लेकिन जब पूरा गांव स्वच्छता को अपना कर्तव्य मान लेता है, तब बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, हम युवाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहती है। युवा किसी भी समाज की ऊर्जा और शक्ति होते हैं अंजलि। युवाओं के पास नई सोच होती है, उत्साह होते हैं, बदलाव होती है और कुछ कर गुजरने की इच्छा भी होती है। यदि गांव के युवा शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल जागरूकता जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो गांव की तस्वीरें बदल सकती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आज आवश्यकता इस बात की कि युवा केवल नौकरी की तलाश तक सीमित न रहे बल्कि समाज निर्माण में भी अपना योगदान दे। गाँव में पुस्तकालय, खेल गतिविधियां, नशा मुक्त अभियान और कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं की पहल से सफल हो सकते हैं। महिलाएं भी गांव के विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला है। किसी भी समाज की प्रगति तब तक अधूरी रहती है जब तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित न हो।
0: बिल्कुल,
1: स्वयं सहायता समूहों ने देशों के अनेक गांवों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव की नई कहानियां भी लिखी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज स्वयं सहायता समूह ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। महिलाएं बचत, उद्यमिता, शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। श्रोता साथियों, जब महिलाओं को अवसर और सम्मान मिलता है तो वे पूरे समाज का विकास कर पाती है। शिक्षा भी सामूहिक प्रयास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि गांव का प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तो समाज का भविष्य मजबूत हो सकता है। शिक्षा केवल जागृति जी रोजगार का माध्यम नहीं होती, शिक्षा व्यक्ति को जागरूक बनाती है, सोचने की क्षमता को विकसित करती है और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए शिक्षा के प्रति समाज की सामूहिक जिम्मेदारी आवश्यक है।
1: जी हाँ अंजलि, जैसे कि जल, जंगल और जमीन हमारे जीवन का आधार है, इनकी रक्षा केवल सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं है। यदि पूरा गांव मिलकर जल संरक्षण करे, वृक्षारोपण करे, पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प ले तो आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती भी बन चुका है। श्रोताओं, ऐसे समय में गांव की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी बन चुका है अंजलि।
0: बिल्कुल,
1: गांव की असली ताकत उसकी सामाजिक एकता में छिपी होती है। जब लोग जाति, धर्म, वर्ग और व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर समाज हित में कार्य करते हैं तब विकास की राह आसान हो जाती है। आपसे विश्वास और सहयोग किसी भी समुदाय की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, आज पलायन भी गांवों की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। रोजगार और सुविधाओं की कमी के कारण अनेक लोग शहरों की ओर जाते हैं, लेकिन यदि गाँव में ही स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग किया जाए तो कृषि को मजबूत बनाया जा सकता है, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। श्रोता साथी, स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास न केवल रोजगार बढ़ाता है बल्कि आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करता है, और यही सच्चे स्वराज का मार्ग है। पंचायतें लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन पंचायत तभी प्रभावी बनती है जब जनता सक्रिय रूप से उसमें भाग लेती है।
1: बिल्कुल,
0: ग्राम सभाओं में भाग लेना, सुझाव देना, योजनाओं की जानकारी रखना और विकास कार्यों की निगरानी करना नागरिकों की ही जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग सामूहिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। हम देखते हैं कि गांवों में कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान, ये सारी अनेक संभावनाएं मौजूद है। यदि इनका सामूहिक रूप से विकास किया जाए तो रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और पलायन की समस्या भी कम हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की सबसे मजबूत नींव जनता की सहभागिता होती है।
0: बिल्कुल,
1: जब लोग स्वयं आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाते हैं तब योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहती बल्कि धरातल पर भी दिखाई देती है। तो श्रोता साथियों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि सच्चा स्वराज हमें यही बताता है कि हम अपने गाँव, समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बने। केवल समस्याओं की चर्चा करने से बदलाव नहीं आता, बदलाव तब आता है जब हम समाधान का हिस्सा बनने का निर्णय लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम अपने गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभाए, स्वच्छता का ध्यान रखें, पर्यावरण की रक्षा करें, शिक्षा को बढ़ावा दें और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत बनाएं, क्योंकि जब पूरा गांव एक दिशा में चलता है तब सफलता उसके कदम चूमती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि मिलजुल कर जब बढ़ते हैं कदम, बदल जाता है गाँव का हर मौसम। सामूहिक प्रयास बने पहचान, खुशहाल हो अपना गांव, जन जन की भागीदारी हो खास, तभी साकार होगा सच्चा स्वराज।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में बस आपसे ये कहना चाहेंगे कि गांव का भविष्य किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, बल्कि पूरे समुदाय की एकजुटता में छिपा है। यदि हम मिलकर प्रयास करें अंजलि, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। इसलिए श्रोताओं, मे से हम की यात्रा तय करें और अपने गांव को विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाइए।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी जो बातचीत रही है सामूहिक प्रयास की शक्ति को लेकर, वो हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है मौसमी बीमारियां और उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर।
0: बिल्कुल
1: कशिश, हम देखते हैं कि बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली, ठंडी हवाएं और प्रकृति की सुंदरता लेकर आता है। यह मौसम खेतों, पेड़ पौधों, जल स्रोतों के लिए जीवनदायी माना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जितना यह मौसम प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाता है उतना ही स्वास्थ्य के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है।
0: जी जी,
1: वर्षा के कारण हम देखते हैं कशिश कि वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जगह जगह पर पानी जमा हो जाता है और गंदगी और कीटाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: यही कारण है कि इस मौसम में संक्रामक रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो आज कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानेंगे कि किस तरीके से मौसमी बीमारियां जो होती हैं उनका हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से हमें समाधान के उपाय खोजने होंगे।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें करने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि मौसमी बीमारियों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर बात करें बरसात के मौसम और स्वास्थ्य के संबंध को लेकर, तो जैसा कि वर्षा होने पर तापमान में बदलाव आता है और वातावरण में भी आर्द्रता बढ़ जाती है।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, ये जो नमी होती है बरसात की, वो बैक्टीरिया, फफूंद और मच्छरों के तेजी से बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। इसके अलावा अंजलि जी, कई स्थानों पर पानी बढ़ने के कारण दूषित पानी पीने और गंदगी फैलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। जब श्रोता साथियों दूषित पानी और भोजन शरीर में प्रवेश करते हैं, तब कई प्रकार की पेट संबंधित बीमारियां फैलने लगती हैं।
1: बिल्कुल
0: वही हम देखते हैं कि ठहरे हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां भी हमें हो जाती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही अब बात करें कि बरसात में सबसे अधिक होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। तो श्रोता साथियों, बरसात के मौसम में सबसे आम बीमारी वायरल फीवर होता है। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी, गले में खराश और कभी कभी खांसी भी हो जाती है। अधिकांश मामलों में कशिश, पर्याप्त आराम, हल्का भोजन और चिकित्सीय सलाह से मरीज जल्दी ठीक होता है।
0: बिल्कुल
1: इसी के साथ हम देखते हैं कि डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडिस मच्छर के काटने से होती है। यह मच्छर साफ और रुके हुए पानी में पनपता है। इसके प्रमुख लक्षण है जैसे कि तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, शरीर और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर लाल चकते होना और प्लेटलेट्स का कम होना।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, डेंगू में स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत चिकित्सीय संपर्क करना बहुत जरूरी होता है। समय पर उपचार मिलने से गंभीर स्थितियों से बचा जा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के आगे अगर बात करें मलेरिया की, तो हम देखते हैं कि मलेरिया श्रोता साथियों मादा एनिफेरिस मच्छर के काटने से फैलता है। इसके कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि ठंड लगकर तेज बुखार आना, पसीना आना, सिर दर्द की समस्या अंजलि जी, कमजोरी और उल्टी।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, यदि समय पर इसका इलाज नहीं होता है तो यह बीमारी गंभीर रूप भी ले सकती है। साथ ही चिकनगुनिया भी एक बीमारी फैलती है अंजलि जी बरसात के मौसम में।
1: बिल्कुल
0: ये भी मच्छरों के द्वारा ही फैलती है। इसमें श्रोता साथियों, व्यक्ति को तेज बुखार आता है, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, शरीर में अकड़न आ जाती है, थकान महसूस होती है और कमजोरी बनी रहती है।
1: बिल्कुल इसी के साथ कशिश, अब बात करते हैं टाइफाइड की। तो श्रोता साथियों, बरसात में दूषित पानी और भोजन के कारण टाइफाइड का खतरा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल
1: मुख्य लक्षण जैसे कि लगातार बुखार रहना, भूख कम लगना, पेट दर्द, कमजोरी, सिर दर्द, इससे बचने के लिए केवल साफ पानी पीना और ताजा भोजन करना ही आवश्यक होता है। हेजा श्रोता साथियों, प्रदूषित पानी से फैलने वाली गंभीर बीमारी होती है।
0: जी जी,
1: इसमें हम देखते हैं कशिश के मरीज को बार बार दस्त लगते हैं, उल्टी आती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, कमजोरी, चक्कर आना, और यदि सही समय पर उपचार न किया जाए तो रोगी की स्थिति गंभीर भी हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: इसलिए श्रोता साथियों, ये कुछ ऐसी मौसमी बीमारियां हैं जिनका हमें समय रहते ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसा कि कशिश बातें कार्यक्रम में बहुत अच्छी चल रही है हमारी श्रोता साथियों से, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हां दिलेजी जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि कशिश, हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना था कि किस तरीके से मौसमी बीमारियों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें हमने गीत से पहले हैजा बीमारी के बारे में जाना, यही बात करें दस्त और फूड पॉइजनिंग की, तो श्रोता साथियों, बरसात में खुले में रखे खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: ऐसे भोजन के सेवन से दस्त, उल्टी, पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए कुछ लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जैसे कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीज। साथ ही जो कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता वाले व्यक्ति होते हैं अंजलि जी, उन्हें भी इस मौसम में सतर्क रहने की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस मौसम में इन व्यक्तियों को संक्रमण जल्दी फैल सकते हैं और गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं।
0: जी जी।
1: इसलिए हमें कुछ उपाय अपनाने की आवश्यकता है, जैसे कि हमें उबला हुआ, फिल्टर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए, ताजा और घर का बना भोजन ही करना चाहिए अंजलि जी। साथ ही खुले में बिकने वाले जो फास्ट फूड होते हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना है।
0: बिल्कुल।
1: खाने से पहले और शौच के बाद श्रोता साथियों साबुन से हाथ धोए, घर के आसपास पानी जमा न होने दे, और इसी के साथ ही पूरी बांह के कपड़े आप पहने।
0: बिल्कुल।
1: रोजाना हल्का व्यायाम करें और पर्याप्त रूप से नींद लें।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यह कहा जा सकता है कि बरसात का मौसम प्रकृति की सुंदरता, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यह मौसम स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त सतर्कता की मांग भी करता है। थोड़ी सी लापरवाही कई प्रकार की मौसमी और संक्रामक बीमारियों को जन्म दे सकती है। जैसे कि हम कार्यक्रम के माध्यम से जान ही पाए कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार, टाइफाइड, हैजा, दस्त और त्वचा संबंधी जो संक्रमण है, वो मुख्य बीमारियां होती हैं इस मौसम की।
1: बिल्कुल।
0: जो कि गंदगी, दूषित पानी, अस्वच्छ खान पान और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के कारण फैलती है। इसलिए इनसे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है स्वच्छता, जागरूकता और समय पर उपचार।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, ये याद रखना आवश्यक है कि स्वस्थ समाज की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति से होती है। यदि हम अपने घर, आंगन, मोहल्ले और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, कहीं भी पानी जमा नहीं होने दें, केवल स्वच्छ और सुरक्षित पानी का प्रयोग करें, ताजा और पौष्टिक भोजन करें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं, तो अधिकांश मौसमी बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: बीमारी होने पर घरेलू उपचार या स्वयं दवा लेने के बजाय योग्य चिकित्सक से सलाह लेना ही समझदारी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। इसी के साथ दोस्तों, अगर बात करें तो कहना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कि बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है अंजलि जी कि वे एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर उसे नजरअंदाज न करें।
0: जी हाँ।
1: समय पर जांच और उपचार न केवल रोगी को स्वस्थ बनाता है बल्कि संक्रमण को फैलने से भी रोकता है साथियों।
0: जी जी।
1: ऐसे में सामुदायिक स्तर पर भी हमारी जिम्मेदारी कम नहीं है। यदि अंजलि जी पूरा समाज मिलकर स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता को अपनाएं, तो बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, एक जागरूक नागरिक ही केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का स्वास्थ्य सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: बिल्कुल कशिश, इस वर्षा ऋतु में हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, स्वच्छता को अपनी आदत बनाएंगे, सुरक्षित खान पान अपनाएंगे, पर्यावरण को साफ रखेंगे और स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारी को अपने परिवार, समाज तक पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि रोग होने के बाद उपचार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है रोगों की रोकथाम करना। यदि हम सावधानी, स्वच्छता और जागरूकता को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो बरसात का मौसम केवल आनंद, ताजगी और खुशियों का मौसम बन जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आज के समय में यह समझना आवश्यक है कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों या दवाइयों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी दिनचर्या, हमारी आदतों और हमारे वातावरणों पर भी समान रूप से निर्भर करता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि घर के आसपास पानी जमा न होने दिया जाए, कचरे का सही निस्तारण किया जाए, मच्छरों के प्रजनन को रोका जाए और स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए, तो कई संक्रामक रोगों के खतरे से हम बच सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बरसात के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं की देखभाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए कशिश हमें। उन्हें पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम, साफ पानी और समय पर स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
0: और यही सारी चीजें उनकी सुरक्षा के लिए कई आवश्यक है। बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय श्रोता साथियों, तुरंत चिकित्सक से सलाह लेना ही बुद्धिमानी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। तो ऐसे में कार्यक्रम के अंत में हम हमारे साथियों से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, बरसात का आनंद तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य हमारे साथ हो। इसलिए सावधानी अपनाइए, स्वच्छता बनाए रखिए, जागरूक रहिए श्रोता साथियों, और अपने परिवार और समाज को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करिए।
0: बिल्कुल,
1: स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ा धन है अंजलि जी, और उसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं, और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी,

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन, जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
1: होवे, सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
3: होवे, स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, आज हम कार्यक्रम में आपसे बातचीत करने वाले हैं कि हम हमारे आराम क्षेत्र से बाहर कैसे निकले।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि हम सभी अपने जीवन में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहाँ हमें सुरक्षा महसूस होती है, जहाँ सब कुछ जाना पहचाना होता है, कोई जोखिम नहीं होता, कोई डर नहीं होता और कोई बड़ी चुनौती भी नहीं होती। इसी जगह को हम आराम क्षेत्र यानी कि कंफर्ट जोन कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि एक बीज मिट्टी के अंदर ही सुरक्षित बैठा रहे तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? यदि नदी अपने स्रोत पर ही रुक जाए तो क्या वह कभी खेती को सींच पाएगी? यदि पक्षी घोंसले से बाहर उड़ना ही न सीखे तो क्या वह खुले आसमान की ऊंचाइयों को छू पाएंगे? श्रोता साथियों, जीवन की सबसे बड़ी सफलता अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां हमारा आराम खत्म होता है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम जानेंगे कि आराम क्षेत्र क्या है, यह हमें कैसे रोकता है और इससे बाहर निकलकर हम अपने जीवन को नई दिशा कैसे दे सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं आराम क्षेत्र से बाहर कैसे निकले।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि श्रोता साथियों, मनुष्य का जीवन स्वभाव से ऐसा है कि वह हमेशा उस स्थिति, उस परिस्थिति, उस काम को पसंद करता है जहाँ उसे सुरक्षा, सुविधा और शांति मिलती है। यही श्रोता साथियों होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वह मानसिक स्थिति है श्रोता साथियों, जहाँ व्यक्ति अपने रोज के कार्यों को बिना किसी विशेष चुनौती या जोखिम के कार्य करता है।
1: बिल्कुल,
0: इस क्षेत्र में रहते हुए असफलता का डर है अंजलि जी, वो कम हो जाता है। लेकिन श्रोता साथियों, कई संभावनाएं और विकास के अवसर है वो हमारे बीच छूट जाते हैं। जीवन में प्रगति करने के लिए केवल सुरक्षित रहना पर्याप्त नहीं है। यदि मनुष्य हमेशा उसी रास्ते पर चलता रहेगा साथियों, जिस पर वह वर्षों से काम करता आया है, तो उसके अनुभव, ज्ञान, क्षमताएं उसी पर सीमित रह जाएंगी।
1: बिल्कुल मनीषा, आज आराम क्षेत्र वह स्थिति है जहां हमें सब कुछ आसान और परिचित लगता है। हम वही काम करते हैं जो हमें पहले से आते हैं। हम नई जिम्मेदारियां, नए लोगों, नए अनुभवों और नई चुनौतियों से बचने लगते हैं। श्रोता साथियों, पहली नजर में यह लगता है क्योंकि यहाँ डर कम होता है, लेकिन धीरे धीरे यही आराम क्षेत्र हमारी प्रगति की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति केवल सुरक्षित रास्ते चुनते हैं श्रोता साथियों, वह जीवन में नए अवसरों तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों से कि हम आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से क्यों डरते हैं, तो श्रोता साथियों, बहुत सी बार हमें ये लगता है कि हम असफल हो जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: लोगों की आलोचना का डर रहता है, आत्मविश्वास की कमी रहती है, नई चीजों की जानकारी नहीं रहती है, पुराने अनुभव का प्रभाव, यह सोच कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, सच्चाई यह है कि असफलता से ज्यादा नुकसान कोशिश न करने से होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए यदि हम हमेशा आराम क्षेत्र में रहेंगे तो हमारी नई चीजें सीखने की क्षमता कम हो जाएगी, आत्मविश्वास धीरे धीरे घटने लगेगा, जीवन में नए अवसर हाथ से निकल जाएंगे, हमारी प्रतिभा छिपी रह जाएगी और हम दूसरों की सफलता देखकर केवल अफसोस करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए श्रोता साथियों कि जो व्यक्ति बदलना नहीं चाहता, समय उसे पीछे छोड़ देता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसलिए श्रोता साथियों, समय समय पर अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: यही सांस है जो व्यक्ति को असाधारण से श्रोता साथियों असाधारण बना

0: करता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज का युग प्रतिस्पर्धा, नवाचार और निरंतर सीखने का युग है। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस नहीं करता है साथियों, वही वो नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुँच पाता। चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन हो, हर क्षेत्र में श्रोता साथियों उन्हें सीमित कर देते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, चुनौतियों को स्वीकार करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास करें।
1: बिल्कुल मनीषा, जब हम नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, नई पहचान बनती है और नए कौशल विकसित होते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते भी हमारे खुल जाते हैं। हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी अपने डर का सामना किया ही होगा, इसलिए जरूरत है हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की। उसके लिए हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा कदम रखने की जरूरत नहीं है। यदि सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता है तो पहले परिवार के सामने बोलिए। यदि नया काम सीखना चाहते हैं तो रोज केवल 20 से 30 मिनट दीजिए। श्रोता साथियों, हर हफ्ता कुछ नया सीखें, जैसे कि नई भाषा सीखना, नई किताब पढ़ना, नई तकनीक, नई खेती की विधि, नया हुनर सीखना, ये सारी चीजें हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए। अगर हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम हमारे जीवन के आराम क्षेत्र से बाहर निकल ही नहीं पाते।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि कंफर्ट जोन केवल आरामदायक बिस्तर या आरामदायक जीवन नहीं होता है, बल्कि यह हमारी सोच की वह सीमा है जहां हम किसी नए कार्यों को करने से बचते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये एक मानसिक दीवार की तरह है श्रोता साथियों, जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि यही ठीक है, इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए अंजलि जी, अब अगर हम बात करें कि यदि कोई विद्यार्थी हमेशा वही विषय पढ़ता रहता है जिसे वह सहज और सरल लगता है, तो हम देखते हैं कि कठिन विषयों से वो बचता रहता है, तो वह अपने ज्ञान का विस्तार नहीं कर पाता है साथियों। इसी प्रकार यदि कोई कर्मचारी वर्षों तक केवल एक ही प्रकार का काम करता रहता है और नई तकनीकों को सीखने से बचता रहता है, तो समय के साथ हम देखते हैं कि वो पीछे छूट जाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर बनी रहेगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से बहुत सी बार हम हमारे आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर पाते, उसके क्या कारण होते हैं और किस तरीके से हर बदलाव को हमें स्वीकार करने की जरूरत है। यही मनीषा बात आती है कि हमें हमेशा गलतियों से कमजोरी महसूस नहीं करनी है, गलतियां हमें और बेहतर बनाती है। हर जो असफलता होती है वो हमें प्रयास करने के और ऐसी चीजें सिखाती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सी बार हम हमारी सफलता की दूसरों से तुलना करने लगते हैं और दूसरों की सफलता को देखकर अधिकतर निराश होते रहते हैं। तो श्रोता साथियों, इस समस्या से भी हमें बचने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: आज आप कल से बेहतर बन जाएंगे यही सबसे बड़ी सफलता है। जो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं उनके साथ आपको समय बिताने की जरूरत है। नकारात्मक सोच वाले जो लोग हैं अक्सर दूसरों के सपनों को छोटा बना देते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर हम बात करें कि लोग कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते हैं, तो श्रोता साथी हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कारण है असफलता का डर।
0: बिल्कुल,
1: लोगों को लगता है कि यदि उन्होंने कुछ नया किया और असफल हो गए तो उनका मजाक उड़ाएंगे। दूसरा कारण है श्रोता साथियों, आत्मविश्वास की कमी। अंजलि जी, हम देखते हैं कि कई लोग क्षमताओं पर विश्वास नहीं कर पाते, उन्हें वे पहले ही मान लेते हैं कि हम असफल हो जाएंगे। श्रोता साथियों, तीसरा सबसे बड़ा कारण है आलस्य और आदत हमारी। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है श्रोता साथियों, उसे वह छोड़ना नहीं चाहता। यही श्रोता साथियों हम देखते हैं कि दूसरों की राय का भी उसे डर रहता है।
0: बिल्कुल,
1: समाज क्या कहेगे, लोग क्या सोचेंगे, यह चिंता उसके मन को आगे बढ़ने से रोक देती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसलिए श्रोता साथियों, अपने डर को पहचानिए और कागज पर लिखिए कि मुझे किस बात से डर लगता है। फिर उसके सामने लिखिए कि अगर मैं यह कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा। धीरे धीरे डर छोटा लगने लगेगा। श्रोता साथियों, रोज एक छोटी चुनौतीपूर्ण जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में आती ही रहती है और उस पर आपको काम करने की जरूरत है। जैसे किसी एक नए व्यक्ति से बात करिए, किसी बैठक में अपनी राय रखना, कोई नया कौशल सीखना, मोबाइल पर समय कम करना और सुबह जल्दी उठना, एक पुस्तक का एक अध्याय पढ़ना और छोटे बदलाव भी जो है मनीषा वो बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि हमारे गांव में भी कई लोग केवल इसलिए नई खेती नहीं अपनाते क्योंकि वे वर्षों से एक ही तरीका अपनाते आ रहे हैं। कई महिलाएं अपने हुनर को घर तक सीमित रखती है क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। कई युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि असफल न हो जाए। लेकिन जिन्होंने नई सोच अपनाई है श्रोता साथियों, उन्होंने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल दी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आराम क्षेत्र में श्रोता साथियों लगातार रहने से व्यक्ति का विकास है वो रुक जाता है।
0: बिल्कुल,
1: उसकी रचनाएं कम हो जाती हैं और वह नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को नहीं डाल पाता।
0: जी जी।
1: ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास या श्रोता साथी वो धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि श्रोता साथियों उसने कभी कठिनाइयों का सामना करना ही नहीं सीखा।
0: जी बिल्कुल।
1: कम्फर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति अवसरों को खो देता है साथियों। कई बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं अंजलि जी जो केवल साहसी लोगों को ही मिलते हैं।
0: जी हाँ।
1: उसके अलावा व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो सीमित हो जाता है साथियों, वह नए अनुभवों को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसलिए श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको आपके जीवन में कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है, तभी आप अपने जीवन में अलग चीजों को पहचान पाएंगे। एक प्रेरणादायक कहानी हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवाना चाहेंगे। श्रोता साथियों, एक गांव में रहने वाला युवक हमेशा यही सोचता था कि उसकी किस्मत में मजदूरी ही लिखी है। एक दिन उसने निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण में दाखिला लिया। शुरुआत में उसे बहुत डर लगा, लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद उसे अच्छी नौकरी मिली। आज वही युवक अपने परिवार का सहारा है और गांव के कई युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रहा है। अगर उसने अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम न रखा होता तो शायद उसका जीवन भी कभी नहीं बदल पाता। इसलिए श्रोता साथियों, याद रखिए कि डर होना सामान्य है लेकिन डर से बाहर न निकलना सबसे बड़ी कमजोरी है।
1: बिल्कुल,
0: छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करिए, कभी सीखना बंद मत करिए और हर चुनौती को नया अवसर समझिए। सफलता आराम क्षेत्र से बाहर मिलती है, इसलिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर सफलता को खोजिए, अपने सपनों को डर से बड़ा बनाइए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आराम क्षेत्र से बाहर निकलने पर हमें कहीं सारे लाभ मिलते हैं। जैसे व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है श्रोता साथियों, तब उसके भीतर छिपी हुई क्षमताएं होती है वो बाहर आने लगती हैं। नई चुनौतियां उसे अधिक मजबूत बनाती है, धैर्यवान और आत्मविश्वासी बनाती है। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि व्यक्ति की सोच है वो व्यापक होती है, वह समस्याओं का समाधान ढूंढने लगता है, साथ ही नई परिस्थितियों से काम करना और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करता है। हम देखते हैं अंजलि जी कि वो निर्णय लेने की क्षमता है उसे भी बढ़ाता है। जीवन में श्रोता साथियों सफलता के साथ साथ आत्मसंतोष भी हमें मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं श्रोता साथियों व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह अपने डर को समाप्त कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति है वो धीरे धीरे अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है।
0: बिल्कुल मनीषा, जीवन में हमें हर दिन दो रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता आसान होता है जहाँ सब कुछ परिचित होता है, लेकिन वहाँ विकास की गति धीमी पड़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा रास्ता चुनौतियों से भरा होता है जहाँ मेहनत करनी पड़ती है, गलतियों से सीखना पड़ता है और कई बार गिर कर फिर उठना पड़ता है। यही रास्ता हमें मजबूत बना है, नई पहचान देता है और हमारी छिपी हुई क्षमताओं को दुनिया के सामने लाता है। आराम क्षेत्र से बाहर निकलना श्रोता साथियों किसी एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह रोज लिया जाने वाला एक छोटा सा निर्णय है। जब हम हर दिन अपने डर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तब धीरे धीरे वही छोटे कदम हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि की नींव बन जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बदलाव हमेशा बाहर से नहीं आता, उसकी शुरुआत हमारे अपने विचारों निर्णयों से होती है। यदि आप आज एक छोटा सा साहसिक कदम उठाते हैं तो आने वाला कल आपके लिए नए अवसर, नई खुशियां, नई सफलता लेकर आ सकता है। इसलिए श्रोता साथियों अपने सपनों पर विश्वास रखिए, चुनौतियों का स्वागत कीजिए और यह भरोसा रखिए कि असली जो क्षमता है आपकी वो वहीं से शुरू होती है जहाँ से आपका आराम क्षेत्र समाप्त होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही हम श्रोता साथियों को बताएं कि आराम क्षेत्र से निकलने के व्यवहारिक उपाय क्या हैं। तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सबसे पहले अपने डर को आप पहचानिए।
0: बिल्कुल।
1: स्वयं से पूछिए कि आपको किस बात का डर है। जब डर का कारण स्पष्ट हो जाएगा साथियों, तो आपका समाधान स्वयं आप ढूंढ सकते हैं। छोटे छोटे नए कदम उठाने का प्रयास कीजिए। एकदम बड़े परिवर्तन लाने के बजाय श्रोता साथियों प्रतिदिन छोटा छोटा और थोड़े थोड़े नए कार्य कीजिए।
0: बिल्कुल।
1: हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए। नई भाषा, नई कौशल, नई तकनीकी, कोई नई पुस्तक पढ़ने का प्रयास कीजिए। श्रोता साथियों, अगर हम ये सब करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर कोई छिपी हुई प्रतिभा होती है वो बाहर निकलती है और हम कुछ नया सीख पाते हैं और हमारे डर को है उसे भी हम पीछे छोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें कर रहे हैं, आगे भी निरंतर यूं ही करते रहेंगे, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे, हम आराम क्षेत्र से बाहर कैसे निकले। यही अगर अंजलि जी बात करें कि युवाओं के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों जरूरी है,
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज के युवाओं के सामने अनेक प्रकार के अवसर हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा से पहले हम देखते हैं कि उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। यदि युवा केवल मोबाइल, सोशल मीडिया और सीमित दिनचर्या तक ही श्रोता साथियों स्वयं को सीमित रखे तो वे अपनी वास्तविक क्षमताओं को भूल जाएंगे। तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि युवाओं को नई तकनीकी सीखनी चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए, संवाद कौशल चिकित्सा विकसित करने चाहिए, साथ ही श्रोता साथियों नेतृत्व की जो क्षमता है वो भी विकसित करनी चाहिए। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जो युवा नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं वे अपने भविष्य में अधिक सफल नागरिक बनते हैं। यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों जरूरी है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि कई विद्यार्थी हैं वो कठिन विषयों से बचते रहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वही विषय हम देखते हैं कि आगे चलकर हमारे भविष्य और हमारी सफलताओं को निर्धारित करते हैं।
1: जी हाँ।
0: कक्षा में प्रश्न पूछना, मंच पर बोलना, प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रोता साथियों भाग लेना, नई परियोजनाओं में कार्य करना विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को मजबूत करता है। सीखने की प्रक्रिया है श्रोता साथियों तभी पूर्ण होती है जब विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, चुनौतियों का सामना करे और अपनी असफलताओं को स्वीकार करना सीखे।
1: बिल्कुल मनीषा, जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि हमारे पास कितने साधन है, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर छिपी संभावनाओं पर कितना विश्वास करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अक्सर हम परिस्थितियों, डर, संकोच और दूसरों की राय को इतना महत्व देने लगते हैं श्रोता साथियों कि अपने सपनों की आवाज ही सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने डर, अपने मन के डर को हराया, नई राह चुनने का साहस किया और लगातार प्रयास करते रहे, उन्होंने साधारण परिस्थितियों से निकल कर भी असाधारण उपलब्धियां हासिल की है।
0: जी बिल्कुल।
1: आराम क्षेत्र से बाहर निकलना केवल नौकरी बदलना या नया व्यवसाय शुरू करना या कोई बड़ा निर्णय लेना नहीं है, यह अपनी सोच के तरीके में बदलाव लाने की प्रक्रिया है।
0: बिल्कुल।
1: स्वयं से यह कहना है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सकता हूँ। जब
0: हाँ।
1: हम नई जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं मनीषा, नई बातें सीखते हैं, गलतियों से घबराने के बजाय उनसे सीखते हैं और हर दिन स्वयं को पहले से थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तभी हमारा व्यक्तित्व निखरता है और जीवन में नए अवसरों के द्वार खुलते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आज के समय में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है साथियों, नई तकनीकों, डिजिटल कौशल और बदलती जीवन शैली को सीखना भी हमारे लिए जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक केवल पुराने तरीकों से काम करता रहेगा साथियों, तो वह बदलती दुनिया से पीछे रह जाएगा।
1: जी हाँ।
0: जो कर्मचारी नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं श्रोता साथियों, वे प्रशिक्षण लेते हैं और नए विचार प्रस्तुत करते हैं और साथ ही आगे बढ़ पाते हैं। हम देखते हैं कि कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना केवल करियर के लिए ही नहीं श्रोता साथियों, बल्कि व्यक्तित्व विकास के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: जब व्यक्ति नए लोगों से मिलता है अंजलि जी, तब हम देखते हैं कि वह नई जगह जाता है और अपने नए अनुभवों को प्राप्त करता है।
1: जी हाँ।
0: तब श्रोता साथियों हम देखते हैं कि उसका दृष्टिकोण है वो व्यापक होता है।
1: बिल्कुल मनीषा, यह भी याद रखना चाहिए हमें कि सफलता किसी एक बड़ी छलांग का परिणाम नहीं होती है, वह छोटे छोटे साहसिक कदमों, निरंतर अभ्यास, धैर्य और सकारात्मक सोच का फल होती है। इसलिए यदि आज कोई कदम छोटा भी लगे तो उसे कम मत समझिए, वही छोटा कदम कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।
0: बिल्कुल।
1: हर नई शुरुआत में हम देखते हैं कि कठिनाइयां तो अवश्य आती हैं, लेकिन समय के साथ वही अनुभव आत्मविश्वास में बदल जाता है। आज हम सभी स्वयं से एक संकल्प ले सकते हैं श्रोता साथियों कि अब हम केवल सुरक्षित और आसान रास्तों तक सीमित नहीं रहेंगे, हम सीखने से नहीं डरेंगे, परिवर्तन को अपनाएंगे, चुनौतियों का स्वागत करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे मन से प्रयास करेंगे।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि जीवन का वास्तविक आनंद वही है जहाँ हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, स्वयं को लगातार बेहतर बनाते हैं और अपने अनुभवों से समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यही प्रेरणादायक विचारों के साथ श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि साहस का एक कदम आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है और आज लिया गया आपका छोटा सा निर्णय आने वाले कल की सबसे बड़ी सफलता की कहानी भी बन सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति अक्सर ही वो समय को टालने टालता रहता है, जबकि हम देखते हैं कि चुनौतियों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, समय का सही प्रबंधन करता है, साथ ही श्रोता साथियों निरंतर प्रयास करने की कोशिश करता है। इससे हम देखते हैं कि वह प्रगति की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। यही अगर बात करें कि आत्मविश्वास और साहस का क्या संबंध है, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता है,
1: बिल्कुल
0: यह श्रोता साथियों छोटे छोटे साहसी प्रयासों से विकसित होता है। हर बार जब व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, तब हम देखते हैं कि उसका आत्मविश्वास है वो पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे वह बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है।
1: जी हाँ मनीषा, जीवन कभी भी एक ही जगह ठहरने का नाम नहीं है। प्रकृति का हर नियम हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सूरज हर सुबह नई शुरुआत करता है, नई नदी जो है अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से टकरा कर भी बहना नहीं छोड़ती, और एक छोटा सा पौधा भी मिट्टी को चीर कर रोशनी की ओर बढ़ता है। यदि प्रकृति का हर तत्व निरंतर परिवर्तन और विकास का संदेश देता है, तो फिर हम अपने जीवन को केवल डर और संकोच की सीमाओं में क्यों बांधे।
0: बिल्कुल,
1: सर हम यह सोचकर अपने कदम को रोक देते हैं कि सही समय आने पर शुरुआत करेंगे, लेकिन श्रोता साथियों सच तो यह है कि सही समय जो है वो कभी अपने आप नहीं आता, उसे हमारे निर्णय हमारे प्रयास सही बनाते हैं। जो व्यक्ति अवसरों का इंतजार करता रहता है मनीषा, वह कई बार पूरी जिंदगी इंतजार ही करता रह जाता है। वहीं जो व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों और अपनी वर्तमान परिस्थितियों के साथ पहला कदम बढ़ा देता है, वही धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाता है।
0: जी हाँ,
1: ये मत सोचिए श्रोता साथियों कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि यह सोचिए कि जो है उसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से बातें चली रही हैं इस विषय को लेकर कि हम कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। तो श्रोता साथियों ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही निरंतर जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,
0: तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि हम कंफर्ट जोन को लेकर बातचीत कर रहे थे, तो यही हमारे सभी के लिए समझना आवश्यक है कि हर बदलाव केवल हमारे लिए नहीं होता, उसका प्रभाव हमारे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: जब एक किसान नई खेती की तकनीक अपनाता है, एक महिला अपने हुनर को पहचान कर आत्मनिर्भर बनती है, एक युवा नई शिक्षा और कौशल सीखने का साहस रखता है, या कोई बुजुर्ग नई सोच को स्वीकार करता है, तब मनीषा केवल एक व्यक्ति नहीं बदलता बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत होती है।
1: बिल्कुल।
0: यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक मजबूत और जागरूक समाज का निर्माण करते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, आज से हम सभी को यह तय करना होगा कि डर को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे, अपनी गलतियों से अनुभव प्राप्त करेंगे, चुनौतियों को अवसर में बदलने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन को केवल सपनों तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। याद रखिए कि मंजिल नहीं मिलती है जो रास्तों की कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, बल्कि हर चुनौती को अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर हमें बनाना होगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि सफलता का मार्ग श्रोता साथियों कभी सीधा नहीं होता, इसमें अनेक कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं। यदि व्यक्ति पहली सफलता में ही श्रोता साथियों हार मानने लगे तो वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि दुनिया के अधिकांश महान व्यक्तियों ने अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल कर ही सफलता प्राप्त की है। उन्होंने जोखिम उठाए हैं, असफलताओं का सामना किया है और निरंतर मेहनत की है। यदि वे केवल सुरक्षित जीवन को अपनाते श्रोता साथियों, तो शायद हम देखते हैं कि दुनिया में उन्हें कोई याद नहीं रख पाता।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, जब हम अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें सबसे अधिक खुशी उन दिनों की नहीं होती जब हमारे पास सब कुछ आसान था, बल्कि उन दिनों की होती है जब हमने कठिनाइयों का सामना किया, अपने डर पर विजय पाई और अपनी क्षमताओं को पहचानने का साहस दिखाया। श्रोता साथियों, जीवन हमें बार बार यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचाने, लेकिन यह अवसर केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो परिवार को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। जो व्यक्ति हर दिन नई चुनौतियों को सीखने का माध्यम मानता है, वह कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपना भविष्य स्वयं लिखता है। यह भी याद रखना चाहिए कि आराम केवल शरीर को विश्राम देता है, लेकिन संघर्ष हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। जब हम नए अनुभवों को अपनाते हैं, अलग सोच रखने वाले लोगों से मिलते हैं, नई जिम्मेदारियां निभाते हैं और अपनी सीमाओं को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, तभी जीवन का वास्तविक विस्तार होता है। यदि हम हमेशा वही करते रहेंगे जो पहले से जानते हैं, तो परिणाम भी वही मिलेंगे जो पहले मिलते रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: बदलाव की शुरुआत किसी बड़े अवसर से नहीं, बल्कि अपने मन में यह विश्वास जगाने से होती है कि मैं आज से बेहतर कल बना सकता हूँ।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि कंफर्ट जोन हमें अस्थायी सुरक्षा तो अवश्य देता है, लेकिन यह हमारी संभावनाओं को उड़ान को सीमित कर देता है।
0: बिल्कुल।
1: जीवन का वास्तविक आनंद श्रोता साथियों तभी मिलता है जब हम नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और हर दिन खुद पर संयम

0: रख के कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं।
1: जी जी।
0: हमें यह समझना चाहिए कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो व्यक्ति परिवर्तन लाता है श्रोता साथियों अपने जीवन में, वह समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए हमें आराम के क्षेत्र और सीमाओं को तोड़ना चाहिए साथियों, नई परिस्थितियों का स्वागत करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हर नया अनुभव हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा और मुझे सक्षम बनाएगा।
1: बिल्कुल मनीषा, हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब उस समाज में रहने वाले लोग बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनाना सीखेंगे। हर माता पिता यदि अपने बच्चों को नए सपने देखने की आज़ादी देंगे, हर शिक्षक यदि बच्चों में जिज्ञासा जगाएंगे, हर किसान नई जानकारी सीखने के लिए तैयार रहेंगे, हर युवा अपनी प्रतिभा पर विश्वास करेंगे और हर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे, तो हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। परिवर्तन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच का परिणाम होता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों, अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव करने का संकल्प लें। हो सकता है कि यह बदलाव एक नई किताब पढ़ने से शुरू हो, किसी एक नए कौशल को सीखने से हो, आपकी झिझक को छोड़कर खुलकर अपनी बात रखने से हो, या किसी अधूरे सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने से हो।
0: बिल्कुल।
1: छोटे छोटे कदम आने वाले समय में बड़ी सफलताओं की नींव बनेंगे।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
0: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
1: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार।
0: साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर रोजाना हाजिर हो जाते हैं सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना है श्रोता साथियों व्हाट्सएप नंबर पर SMS, लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं, वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। नंबर फिर से बताना चाहूंगी साथियों, हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, हमें इंतजार रहेगा आपके द्वारा भेजे गए नगमों का। अब जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम में शुरू हो चुका है, तो मैं बढ़ना चाहूंगी हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, पहली फरमाइश का गीत आया है पंडरपुर से, फिल्म का नाम है नमक हलाल, गीत के बोल है कि पग गुंगरू बांध मेरा नाचेगी। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं जाखिल मुलाणी, सुबह सलमा, मुमताज, दिलसाद नसरबी, बानो विभाषा मुलाणी, और भी दोस्त इस गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी दोस्तों, जुड़ रहे हैं पंडरपुर रोहिदास चौक से ही सुनीता सिंधे, यशार सिंधे, प्रशांत सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। इसी बीच जुड़ रहे नेहरू चौक पेठन से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, सिया जाधव, जलाना शहर से सोमनाथ, गीता जाधव, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ संगीता जाधव। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है के पग गुंगरू बांध मेरा नाचेगी। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, जैसे कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम में शुरू हो चुका है, तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी कार्यक्रम आपके फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों, अभी हमने फरमाइश का पहला गीत सुना, इस गीत के बाद बढ़ते हैं फिर से अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश का नाम है साथियों, बताना चाहूँगी, आई है बागपत से। फिल्म का नाम है सनम बेवफा, गीत के बोल हैं चूड़ी मजा ना देगी। फरमाइश करता जुड़ रहा है आसिफ अली खान, मोमिन अनास, सादिक अली खान, सारिक अली खान। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूंगी। ऑरेंज सिटी नागपुर से है विठल जादव, अनुसया जादव, पवन राजे जादव। औरंगाबाद से मंगेश इंगले, सेंथे इंगले, विराज इंगले। और भी दोस्त हमारे इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, नाम बताना चाहूंगी। श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं कोचगोरी कॉलोनी कॉपर गाँव से सुरेश मालोड़े, वर्षा मालोड़े, श्रद्धा मालोड़े जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुजनशन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चूड़ी मजा ना देगी, कंगन मजा ना देगा।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की। और अगली फरमाइश आई है पद्मा टॉकेट निबानगर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों राम लखन। गीत के बोल है तेरा नाम लिया तुझको याद किया। फरमाइश करता जुड़ रहा श्री रंजन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्षक नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन जी शाह, मंगला बेन जी शाह, राजन सुषमा कपूर जी, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरल जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदनी जंगेल, सुकड़ी कला से अमित शकुन, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगेल, निजामाबाद हरियाणा से जसप्रीत सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कमरजीत कौर। जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी, अब्दुल अब्बार अब्बासी जी। मजनू का टिल्ला से है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक। और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। गाजियाबाद से हैं शिषपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी। और भी श्रोता साथी नवाशहर पंजाब से हैं सुरेंद्र साधु, अनिता साधु, रोहित साधु, रितेश साधु, शिक्षा साधु, प्रतीक्षा साधु और मेक्ष जी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कृतनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोकेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी गोस्वामी जी और दिशा गोस्वामी जी। बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रतापुत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बेटी अंजलि, नितिन जगमोहन, सिद्धुनूतन, भुवनेश्वरी देवी जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तेरा नाम लिया तुझको याद किया। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसे कि फरमाइश का सिलसिला बहुत ही अच्छा चल रहा है कार्यक्रम के माध्यम से, इसी बीच अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ से फिल्म का नाम है आंखें, गीत के बोल हैं श्रोता साथियों, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी, बटेना पालन पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकन वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, अमित वर्मा जी और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी, रतलाम एमपी से जुड़ना चाह रहे हैं। जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी दोस्तों, जुड़ रहे हैं बोरखेड़ा पितराम्बल से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाठर, लिरिक सिंह पंवार दी, दीक्षा कुश मुड़त जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। आपको नाम बताना चाहूँगी, राजगढ़ मध्य प्रदेश से है गोविंद वैष्णव, दिव्या सोमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।

0: रात कभी कभी।
1: श्रोता साथियों, जैसे कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। इसी गीत के बाद साथियों फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मगल रोड छत्तीसगढ़ से, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रे चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार चंदन। फिल्म का नाम है, श्रोता साथियों आपको बताना चाहूँगी नाम, गीत के बोल है चिट्ठी आई है। इस गीत को आवाज़ दिए पंकज जी ने, और फरमाइश करता और भी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। छोटू नटी बुलार शहर से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद सिद्धबासी, निगत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। साथियों गोंजू द्वारा से जुड़ रहे हैं मोहम्मद यासिन हाशमी, बेगम हाशमी, तौफीक हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष यादव, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, सपिल धाड़े, अजय खिरोड़कर। इसी बीच खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, डीटू लक्ष्म मल्होत्रा, लड़ोकल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोनिका कॉल सिक्का, डुग्गू सिक्का। पोटा कला दुर्ग से संजय साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं चिट्ठी आई है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, सहारनपुर जनकपुरी से। फिल्म का नाम है, गीत के बोल हैं श्रोता साथियों, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं जौनकपुरी सहारनपुर से। जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलेज डिकेस्टो जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर से अशोक कुमार, अविका जीविका सानू कुमार, अविका सोनवाने, शायसा सोनवाने जी। डी गिरडी झारखंड से हैं मोहम्मद यासिन अंजान, सवन नवाज, असन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। गंजुटवारा से जुड़ना चाह रहे शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, जस्मिन और प्रयागराज भट्ट। कुंभार गली श्रीरामपुर से जुड़ रहे हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिण दले, इश्की दले, जीविका दले, सानिका दले। पूना वाले पुड़े से अजाज सोनवाने, करिश्मा अविका, सायसा सोनवाने, विशाखा सोनवाने जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मैंने पूछा चांद से। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगले फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है भोपालगढ़ राजस्थान से। फिल्म का नाम है श्रुता साथियों तुम बिन, गीत के बोल हैं तेरी फरियाद। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से, गंगनदीप थांडी, तिंदा कुमारी थांडी, प्रियंका थांडी, तृप्ता जी, प्रशांत थांडी, प्रियम वामिका, वाणी थांडी जी। इसी बीच जाखोद राजस्थान से भी जुड़ रहे शमदुल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। और भी श्रोता साथी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजे नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। गंजडवाड़ा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, एयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासिन हाशमी, शमशुल कमर राही। जुड़ना चाह रहे सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजे डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी कुंभारहेड़ा से जुड़ रहे हैं सैयद मसूर, साइना असा, अक्सा, नाजमा, आफिया, इब्राहिम, अदीप जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से, भाई प्रेम सिंह वडवाल, सुखविल, काजल वडवाल, लखवीर वडवाल, रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदू, प्रवीण शीतन, नवीन नगीला, निशान अनमोल, प्यारा बेटे, चटकू मटकू, महावीर गीता मलखट, सुखचैन सिंह बोटा, धर्मवीर सिंह बोक। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, हीरामन शंडे जी, प्रेम प्रसिद्धि, प्रतिभा गुणाने जी। और भी श्रोता साथी हरिद्वार से हैं ताज बदनसारी, गुलाम शाबी राही, मेहराज जहां। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कोई फरियाद। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गीत की बोल है तू मुझे कबूल। इस गीत की फरमाइश करता है सोनू सुरेश, राजपत पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, झारखंड से अब्बास आलम, मजद अली, लाडली और निशा जी। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, प्रजेश संगई, प्रतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, शुद्ध रमेश शाहू जी। डुमराव से बिहार जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी, दानिश जी और अलीबा जी। बक्सर से और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे यवतमाल महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल। और भी साथी जुड़ना चाह रहे महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, सुप्रीत लोखंडे और रक्षिता जी लोखंडे। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल है तू मुझे कबूल। आप सभी बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है हनुमान के राजस्थान से। फिल्म का नाम है आशा, गीत के बोल हैं शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश और योगेश कड़वासरा। इसे भी जुड़ना चाह रहे बाबा कुटरे रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष जी चौहान। इस गीत के अनुरोध करता है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गांजीपुर से जुड़ रहे हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आज़ाद। साथ ही जुड़ना चाह रहे बरका काना से अफ्ताब तास, साहिद सुल्तान, सोनू तस्नीम, कमर कुमार जी, अफ्ताब मलिक जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं आकुट से विनायक भिंडे, श्रीमती मंगला भिंडे, विजय शुभम, पवन जरिए और सचिव जी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू और राहुल जी शाहू। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं शीशा हो या दिल टूट जाता है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने लता जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है डापकी रोड अकोला सी। फिल्म का नाम है शोर। गीत की बोल है पानी रे पानी तेरा रंग के साम। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने और मुकेश जी ने। इस गीत की अनुरोध करता है सुशला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। और भी श्रोता साथ जुड़ना चाह रहे महाराष्ट्र से बाबा साहेब कणक्कर, साखरभाई कणक्कर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी और कणक्कर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती जी बघेल। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर शाहू, करण शाहू, चंपाजी शाहू। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामणि शिंदे, शीला देवी शिंदे और सिद्धार्थ गोड़ानी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना, गीत के बोल थे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल, गीत के बोल ही परदेसी ये सच है पिया। इस गीत की फरमाइश करता है गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास, बिलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित सोमो, मानस जी राज और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। शिवांगी नगर से राजेश खोबरकेड़ी, इंद्राताई खोबरकेड़ी, शिवसागर खोबरकेड़ी, जंकुताई और तनुजा जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे पंडितपुर सिटी से प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़की जी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबली पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल जी राजेश। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ रहे हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। इसे भी जुड़ना चाह रही हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोदपुरी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है हीना, गीत के बोल हैं जाने वाले ओ जाने वाले। इस गीत की फरमाइश करता है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। कलानोर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरजार, नरगिस जी खातून इस गीत के अनुरोध करता है। नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर मलकापुर से जुड़ना चाह रहे हैं। नारायण इगले, सोपान इगले, आशीष महेकर जी इस गीत के अनुरोध करता है। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजादव, प्रशांत राजी यादव, सचिन वायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना जी देशमुख इसी भी जुड़ना चाह रही हैं। एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा इसे भी जुड़ना चाह रहे। वासिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायराजी सुरोशी इस गीत के अनुरोध करता है। सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंद्रा देवी शर्मा, सार्थक जी शर्मा इसे भी जुड़ना चाह रहे। मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य जी कसाना। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पठरिया छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है फकीरा, गीत की बोल ही दिल में तुझे बिठाकर। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने। इस गीत की अनुरोध करता है नरेन नेताम, कुसुम नेताम। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से श्याम की टी, वंदना की टी, भाविका जी की टी। इस गीत की अनुरोध करता है कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इसी बीच जुन्नाचार्य अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हंगोली, योगिता, प्रणाली, सार्थक और हंगोली परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुन्नाचार्य हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक जी भाटिया। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इस गीत के अनुरोध करता है सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडेतकर, शुभम वडेतकर, पन्नू वडेतकर जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं भवानी नगर पेठण से अरुण, आरती, भाव स्वायब, गंगा सागर, हर्षवर्धन, अशोक और राशि जी, कार्तिक परी। इसी बीच जुन्नाचार्य धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत के अनुरोध करता है अंबाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। इसी बीच जुन्नाचार्य छत्रपति शिवाजी नगर से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षिजी सेन। इस गीत के अनुरोध करता है मॉडल ट्यून कर्नल से सुधीर न्यूटन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण शर्मा, किरण ठाकुर, बेशाना शर्मा, सोनिया अलका, आशा गुगलानी जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम ही एक दूजे के लिए, गीत की बोल हैं 16 बरस की बाली उम्र। इस गीत की फरमाइश करते हैं सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, बीबी विदई जोशी, खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रही अब्दुल गफ्फार डावर जी, इसी बीच जुड़ना चाह रहे मराठवाड़ा से समीद मशरूम, साइना हसन, आक्सा नाजिया, आफिया और इब्राहिम जी, जौनपुर से जुड़ना चाह रहे इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजात अबू सम, बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर मजीद अंसारी, नोरीन अंसारी, आफिया परवीन जी, इसी बीच जुड़ना चाह रहे सनावत से मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद सायक और बब्बू डब्बू जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं 16 बरस की बाल उम्र को सलाम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वाग रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और श्रोता साथियों, यह गीत आज की कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपने साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपके रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है समस्या समाधान, इसे आप सुन पाएंगे 8 बजे। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा में आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे 9:00 शाम में कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: ये सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं।
1: आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं ना, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है।
2: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नो मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: एवो केवाय जैवीरे एक बैरू मजबूत बने हैं, तैवीरे पूरो परिवार मजबूत बने हैं। पण मजबूती खाली शब्द केवा थकी नती आवती, आवे है अधिकार थकी, सुरक्षा थकी, अने आपरे अस्तित्व नी पहचान थकी। जमीन पैसा माथे बैरा नो नाम एने हपना नो पहलू पगतियो है। इन्हें मले है आत्मविश्वास, रुपया नी सुरक्षा अने आपरा फैसला खुद लेवानी ताकत। तो आओ बोलो, आजे मली ने आवाज उठावो। એટલે હંગરી સૂર્યે, હંગરી બુને, હંગરી માય આપણા હકને જમી માતે ગર્વ થકી ઉભી થઈ શકે। બોનને અધિકાર, કિમ કી અધિકારસ અસલી તાકત હે।
0: વાગડ રેડિયો એવમ વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત।
4: પપ્પા પપ્પા, મારે ભી ભણવા જાવું હે, સોપડા થકી દોસ્તી કરવી હે।
5: બસ यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
4: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
6: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
5: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे देश अगाड़ी बढ़ेगा।
5: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कशिश, युवा और वृक्षारोपण, भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर।
0: बिल्कुल जी हाँ जागृति जी, क्योंकि आज का ये जो हमारा विषय है वो केवल पर्यावरण की सुरक्षा का नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि हमारे भविष्य के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारा बातचीत का विषय है युवाओं और वृक्षारोपण, भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर।
1: बिल्कुल कशिश,
0: तो इस विषय को लेकर आज हम श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बातें ढेर सारी करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथियों को पता है कि हम उन्हें शुरुआत में पहले एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना आज भी शुरुआत में ही दोस्तों को पहले यहाँ मनोरंजन करवा दे।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि कशिश, हमने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं युवा और वृक्षारोपण भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि हम सब देखते हैं कि आज का युग विकास, विज्ञान और तकनीक का युग है।
1: बिल्कुल।
0: मनुष्य ने प्रगति के बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन इस विकास के दौर में प्रकृति को बहुत भारी नुकसान भी पहुंचा है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अनियमित वर्षा हो रही है, बढ़ता तापमान मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे समय में वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का साधन नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि मानव अस्तित्व को बचाने का अभियान भी है।
1: बिल्कुल।
0: वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, वायु देते हैं, छाया, फल, औषधि और जीवन प्रदान करते हैं। इसीलिए आज वृक्षारोपण की जिम्मेदारी विशेष रूप से युवाओं के कंधों पर है, क्योंकि हम ही भविष्य के निर्माता है श्रोता साथियों। वृक्ष पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य का आधार भी है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। साथियों, हम देखते हैं कि आज शहरों का विस्तार तेजी से हो रहा है। नई सड़कें, भवन, उद्योग और अन्य विकास के कार्यों के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: जिसका परिणाम श्रोता साथियों हमारे सामने ये है कि जंगलों का क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है। इसके कारण तापमान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, अनियमित वर्षा हो रही है और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में जागृति जी, गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान के लिए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कई क्षेत्रों में जल संकट गंभीर होता जा रहा है और वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधित बीमारियां भी बढ़ रही है। और इन सभी समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण है वृक्षों की कमी।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, ऐसी स्थिति में वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय माना जा सकता है जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनके पास ऊर्जा, उत्साह, नवीन सोच और परिवर्तन लाने की क्षमता होती है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, जिस प्रकार हम युवा देश के विकास में योगदान देते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण में भी हमें अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण रखना होगा।
1: जी जी।
0: यदि हम युवा वृक्षारोपण को अपना सामाजिक दायित्व समझ लेंगे कशिश, तो देश में हरियाली की नई क्रांति आ सकती है। आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, शिक्षा संस्थानों और कई अभियानों के माध्यम से युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: अनेक युवा संगठन गांव और शहरों में पौधारोपण अभियान चला रहे हैं। ये सकारात्मक पहल न केवल पर्यावरण को बचाने में सहायक है, बल्कि समाज को भी प्रेरित कर रही है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ दोस्तों, वृक्षारोपण केवल पौधा लगाना नहीं होता, यानी कि कहने का मतलब यही है कि अक्सर लोग किसी विशेष अवसर पर पौधा लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं जागृति जी। हाँ। लेकिन वास्तविक वृक्षारोपण का मतलब है पौधे को पेड़ बनने तक उसकी देखभाल करना। श्रोता साथियों, पौधे को नियमित पानी देना, पशुओं से बचाना, उचित खाद देना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि यदि लगाए गए पौधों की देखभाल नहीं की जाए तो उनका जीवित रहना थोड़ा कठिन हो सकता है जागृति जी। इसलिए हमारे युवा साथियों को केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उनके संरक्षण का संकल्प भी लेना है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि वृक्ष प्रकृति की अमूल्य धरोहर है और इनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये वायु प्रदूषण को कम करते हैं, जल संरक्षण में सहायता करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वृक्ष वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको ये कहना चाहेंगे कि भविष्य उन्हीं का होता है जो आज उसे बनाने का प्रयास करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पर्यावरण में जो पर्यावरणीय संकट दिखाई दे रहा है कशिश, उनका प्रभाव सबसे अधिक आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम यही बातें बताते हैं। इसीलिए श्रोता साथियों, हम युवाओं का कर्तव्य है कि हम आज से ही प्रकृति का संरक्षण सही दिशा में लगाए। यदि युवा वृक्षारोपण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना ले तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार संभव है कशिश।
1: बिल्कुल।
0: प्रत्येक युवा यदि हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो करोड़ों वृक्ष तैयार हो सकते हैं। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी स्वस्थ जीवन मिलेगा।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि हम युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं और आगे हम जानेंगे कि वृक्षारोपण और स्वास्थ्य का क्या संबंध है।
0: बिल्कुल।
1: तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।
1: तो युवा साथियों, आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है श्रोता साथियों, वृक्षारोपण भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर, और गीत से पहले हम ढेर सारी बातें जान पाए थे कि हमारे युवा साथियों को समझने की आवश्यकता है कि वृक्षारोपण करना कितना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर बात करें भविष्य की जिम्मेदारी की, तो देखते हैं कि भविष्य केवल सरकारों या फिर पर्यावरण विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये हम सभी की जिम्मेदारी है, और विशेषकर हमारे युवा साथियों की, क्योंकि आने वाले वर्षों में जो पर्यावरण हमें मिलेगा दोस्तों, वह आज किए गए कार्यों पर ही निर्भर करता है। यदि आज हम वृक्ष लगाएंगे तो भविष्य में हमें स्वच्छ हवा, पर्याप्त जल और स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त होगा। जागृति जी,
1: बिल्कुल।
0: वहीं इसके विपरीत यदि हम आज लापरवाह बने रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर पर्यावरणीय संकटों का सामना करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि युवा केवल स्वयं वृक्ष लगाकर ही नहीं बल्कि दूसरों को प्रेरित करके भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वे गांव-गांव और शहर-शहर जागरूकता अभियान चला सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी फैला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज अनेक राज्यों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: करोड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं। श्रोता साथ, ये दर्शाता है कि यदि समाज और युवा मिलकर प्रयास करेंगे तो हरित भारत का सपना साकार हो सकता है।
0: जी जी,
1: हम आपसे कहना चाहेंगे कि वृक्ष केवल पर्यावरण नहीं बचाते बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। वृक्षों से फल, लकड़ी, औषधियां, हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है।
0: बिल्कुल,
1: ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लाखों लोगों की आजीविका भी वनों पर ही निर्भर करती है। कशिश, वृक्ष रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं और प्राकृतिक संसाधन की रक्षा भी करते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोताओं, हरित वातावरण लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, मानसिक तनाव कम करता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि अगर वृक्ष बचेंगे तो हमारा जीवन सजेगा, और अगर हमारा जीवन सजेगा तो हर घर खुशियों से भर जाएगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर वृक्षारोपण और स्वास्थ्य को लेकर हम बात करें तो स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण जरूरी होता है, ये हम सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में वृक्ष जो है वो वायु को शुद्ध बनाते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। साथ ही दोस्तों, जो आसपास हमारी हरियाली होती है वो मानसिक तनाव को कम करती है और हमारे मन को भी शांति प्रदान करती है।
1: जी हाँ,
0: देखते हैं कि शोधों से ये स्पष्ट हुआ है कि हरित वातावरण में रहने वाले लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसलिए वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं है बल्कि स्वस्थ समाज निर्माण का भी आधार है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं जागृति जी कि वृक्षारोपण को हमें जन आंदोलन बनाना होगा। विद्यालय, महाविद्यालय, युवा मंडल, स्वयंसेवी संगठन और यहाँ तक कि अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को हमें इसके लिए प्रति जागरूक करना होगा।
1: जी हाँ,
0: हमें श्रोता साथियों, प्रत्येक गांव शहर में नियमित रूप से वृक्षारोपण अभियान चलाने होंगे। जन्मदिन, विवाह, अन्य विशेष अवसरों पर पौधे लगाने की परंपरा विकसित करनी होगी। इससे समाज में जागृति जी पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित जरूर होगी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा राष्ट्र की शक्ति है और वृक्ष पृथ्वी की शक्ति है। जब ये दोनों मिल जाते हैं कशिश, तो एक सुरक्षित, स्वच्छ और समृद्ध भविष्य का निर्माण होता है।
0: बिल्कुल,
1: आज आवश्यकता केवल पौधे लगाने की नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक संभालने की भी है। प्रत्येक युवा को ये संकल्प लेना होगा कि वो अपने जीवन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए और दूसरों को प्रेरित करे। धरती हमें जीवन देती है, इसलिए उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। यदि आज हम वृक्षारोपण को अपनी जिम्मेदारी बना लेंगे कशिश, तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देगी।
0: जी हाँ,
1: भविष्य की सुरक्षा किसी सरकार या संस्था की अकेली नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से युवाओं का दायित्व है।
0: बिल्कुल,
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि याद रखिए, भविष्य किताबों में नहीं लिखा होता, उसे कर्मों से बनाया जाता है। आज लगाया गया एक छोटा सा पौधा कल किसी बच्चे को शुद्ध हवा देगा, किसी राहगीर को छाया देगा और इस धरती को जीवन देगा। इसीलिए हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वृक्ष लगाएं, क्योंकि कहा गया है कि हर युवा को यही सपना सजाना चाहिए कि हरियाली से हमारा देश सजे। एक पौधा आज लगाए और सुरक्षित भविष्य पाए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं एक और गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वृक्षारोपण और युवा साथी को लेकर, ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप जरूर अपने राय सुझाव हम तक पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन के माध्यम से हम जब भी हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे एक नए प्रेरणादायक विषय को लेकर बातचीत रहती है। तो आज भी श्रोता साथियों में ऐसे ही विषय को लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारे आपसे बातें रहने वाली हैं पौधों और पर्यावरण को लेकर। श्रोता साथियों, कहा जाता है कि प्रकृति हमें जीवन देती है और हम पर भी यह जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा करें। धरती, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु ये सभी हमारे जीवन के अभिन्न साथी हैं। साथियों, यदि इसमें से कोई भी एक भी कमजोर पड़ जाए तो हम देखते हैं कि जीवन का संतुलन है वो बिगड़ सकता है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, कहीं जंगल कम हो रहे हैं, कहीं नदियां प्रदूषित हो रही हैं, तो कहीं बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस धरती को सुरक्षित कौन रखेगा। श्रोता साथियों, इसका सबसे सुंदर उत्तर है हमारे बच्चे। बच्चों के मन यदि बचपन से ही पेड़ों, पौधों, जल, मिट्टी और प्रकृति के प्रति प्रेम विकसित हो जाए तो वे बड़े होकर ऐसे नागरिक बनेंगे जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए सोचेंगे। जी हाँ श्रोता साथियों, एक बच्चा जब एक पौधा लगाता है, उसकी देखभाल करता है, पानी बचाता है, प्लास्टिक का कम उपयोग करता है या किसी पेड़ को काटने से बचाने की कोशिश करता है, तब श्रोता साथियों वह केवल एक छोटा सा काम नहीं करता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करता है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारी इस विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं पौधे और पर्यावरण को लेकर। किस प्रकार हमारे बच्चे हैं वो पौधे और पर्यावरण के दोस्त हैं। तो श्रोता साथियों, मैंने आपसे कहा था कार्यक्रम के माध्यम से कि प्रकृति हमें जीवन देती है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें। और श्रोता साथियों, हम इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी भूमिका हमारे बच्चे हैं वो इसमें निभा सकते हैं। श्रोता साथियों, आज का यह नाटक हमें यह संदेश देता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या बड़े लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे घर के जो बच्चे हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आरती और पूजा के बीच एक प्रेरणादायक संवाद को।
1: अरे आरती, तुम रोज रोज इन पौधों के पीछे क्यों लगी रहती हो? छुट्टी का समय है, चलो खेलते हैं।
2: अरे पूजा, खेलेंगे भी, लेकिन पहले इन पौधों को पानी तो दे दूं। दो दिन से बारिश नहीं हुई है यार, अगर इन्हें समय पर पानी नहीं मिलेगा तो ये सूख सकते हैं।
1: अरे दो चार पौधे सूख भी गए तो क्या ही फर्क पड़ेगा आरती?
2: फर्क पड़ता है पूजा, बहुत फर्क पड़ता है। एक पौधा केवल पौधा नहीं होता, वह भविष्य का एक बड़ा पेड़ होता है, जो हमें ऑक्सीजन भी देता है, छाया भी देता है और पशु पक्षियों को घर भी देता है। साथ ही तुम्हें पता है कि एक पौधा जब पेड़ बनता है तो यह पर्यावरण को संतुलित भी रखता है।
1: अच्छा, मैंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं।
2: हाँ, अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। हम पेड़ का महत्व तब समझते हैं जब गर्मी में छाया नहीं मिलती या बारिश कम होने लगती है।
1: लेकिन आरती, इतने सारे पेड़ तो है पहले से।
2: पहले थे पूजा, लेकिन हर साल लाखों पेड़ हम देख रहे हैं कि काटे भी जा रहे हैं। अगर नए पौधे नहीं लगाए जाएंगे तो आने वाले समय में हरियाली कम होती जाएगी ना।
1: बात तो तुम्हारी सही है।
2: हाँ, और सोचो कि अगर बच्चा साल में केवल एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो हमारा गांव, हमारा शहर और हमारा पूरा देश कितना हरा भरा हो सकता है ना।
1: ये बात तो बहुत अच्छी है।
2: हाँ पूजा, क्या तुम्हें पता है पेड़ केवल हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि मिट्टी को भी बचाते हैं।
1: अच्छा, मिट्टी को कैसे बचाते हैं?
2: पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती है, इससे बारिश के समय मिट्टी बह कर नहीं जाती।
1: ओह, मुझे तो यह भी नहीं पता था।
2: हाँ, इसलिए पेड़ धरती के सच्चे रक्षक माने जाते हैं।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसके साथ श्रोता साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।
1: चित्तकिता

0: माटी में जमी हूँ और माटी तकीस जाने जाऊँ हूँ। मैं खेत हमारा बीज बोया मैं फसल बहाई वो विश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जमीन माते मारो अधिकार किन नती सूरी जन्म तकीस हकदार है कानूने आ बात मानी है न पन्या पूटे एवं हक को ले सके न रिवाज अन सच में बदली सके बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार सूर्य नो हक इन्हें पहचान
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा था की दोस्ती करवी है
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
1: हिंडो स्कूल जा अपड़े अपड़ा भी अपना पूरा करो
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: थारी में पासो लावो जूनू हवार सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारते नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
1: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज अमारे कार्यक्रम में आपते की बातचीत नु विषय है कि आपड़े जे भाई बोन है ई मक्का नी खेती नी देखभाल हरते करे ने कई कई वात नु एणने ध्यान राखवो होगा। तो अण विषय माते अमारी आपते की घणा कानी वात थायंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते। तो भाई बोनो आप हमारे रहो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: બહેન બોનું ગીત તો અહીં શું પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણી મન સ્વાગત કરો હું અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈ બોનું અમે આપને ગીત ટકી પહેલા વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે મક્કાની દેખભાલ આપણે હરતે કરી શકો, તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થી જોડી રહી માંગીલાલજી. તો સૌથી કે પહેલા આપણે હામરી લેણાની વાત અને મોરે કરા આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર જી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: જી ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કી આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈ ઓર ખેતી સે જુડી વિશેષ જાણકારી આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો દેતે હૈ. તો આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે મક્કા કી ફસલ કી દેખભાલ હમારે કિસાન ભાઈ બહેન કૈસે કરે.
1: જી તો જૈસે આપને બોલા મક્કા કી દેખભાલ કૈસે કરે, તો એ બહુત અચ્છા વિષય હૈ ઓર વર્તમાન મેં અભી જો હમારે મક્કા જો કિસાન ભાઈ બો રહે હૈ ઉનકે લિયે ભી કાફી મહત્વપૂર્ણ હૈ. तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भी ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे मक्के की खेती है प्रमुख रूप से होती है और काफी मात्रा में हमारे यहाँ मक्का होती है. तो मक्का जो है केवल हम रोटी में उपयोग नहीं करते, उसके अलावा उसका दाल है, दलिया है या उसका भुट्टा है, उसको हम उपयोग करते हैं और बाजार में सेल करते हैं और हम खाते हैं. तो पोषण की दृष्टि से भी मक्का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है. तो देखिए अगर हम मक्का की बात करते हैं तो मक्का में कई प्रकार के रोग भी लग जाते हैं. इसके साथ में जो है जैसे उनकी वृद्धि कम हो जाना, रोग लग जाना, फिर पानी का प्रबंधन है वो कभी कभी हमसे सही से नहीं हो पाता है.
0: बिल्कुल.
1: तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका यहाँ पे ये हो जाता है कि आप जो अपना खेत है उसका निरीक्षण लगातार करें.
0: जी जी.
1: कम से कम जैसे आप अगर मक्का आपने बो दी है तो हफ्ता में दो बार आप खेत में जाएं, उसका निरीक्षण करें, उसको देखें कि कैसे वो वृद्धि हो रही है, पौधा कैसा है, किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है, उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ रही है. तो आप अगर हफ्ता में दो बार जाएंगे तो आपको नजर आएगा. इसके साथ में आप देखेंगे उसका रंग कैसा है, कहीं पीला तो नहीं हो रहा है, तो ये जो सारे लक्षण हैं वो आपको पता लगेंगे उसके निरीक्षण से.
0: बिल्कुल.
1: इसके साथ ही है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि फसलें पीली पड़ जाती है, सूखने लगती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, तो तुरंत इसका कारण जानने का प्रयास करें.
0: बिल्कुल.
1: और हम जो हमारे पास में जिस प्रकार का उपचार होता है, अगर इस तरह की कोई बीमारी अगर लग रही है तो वहाँ पे आप जो है जीवामृत है या आप दसपर्णी है, नीमास्त्र है, इनका उपयोग आप कर सकते हैं ताकि जो कीट है वो वहां से चले जाएंगे आपके खेत से.
0: जी जी.
1: तो ये जरूरी है. इसके साथ ही जब हम फसल बो देते

0: हैं तो जब आप निराई गुड़ाई की हम बात करते हैं तो देखिए बुआई के 40-45 दिन एक तो महत्वपूर्ण होते हैं उस फसल के लिए। इस अवधि में क्या होता है कि खरपतवार जो है वो तेजी से बढ़ते हैं
1: बिल्कुल,
0: और सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा उनके ऊपर पड़ता है, तो उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है मक्का और खरपतवार में।
1: बिल्कुल,
0: तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने 20-25 दिन हो गए बुआई के, तो आप पहले अपने खेत में जाके देखिए किस प्रकार का खरपतवार है और क्या क्या चीजें उग रही है उसमें। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपकी निराई गुड़ाई बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि अगर हम खरपतवार नहीं निकालेंगे तो आपकी फसल की वृद्धि है वो रुक जाएगी।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि मक्का की फसल की देखभाल क्यों जरूरी है, जिसमें आपने हमें बताया कि फसल का नियमित निरीक्षण करना है, समय पर निराई गुड़ाई करनी है, यही सर संतुलित पोषण किस तरीके से उपलब्ध हम करा सकते हैं?
0: देखिए हमारे पास में सबसे बढ़िया स्रोत ये है संतुलित पोषण की हम बात करें तो, हमारे पास में गोबर खाद है।
1: बिल्कुल,
0: कई किसान भाइयों के पास में वर्मी कम्पोस्ट होगा, किसी के पास जीव अमृत है, या फिर आपका जो उकेड़ा का खाद है। तो ये जो खाद्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे फसल के लिए, और ये उर्वरकता है मिट्टी की बहुत अच्छे से बढ़ाती है
1: जी,
0: जिसके कारण आपकी जो फसल है वो बेहतर होगी, उसकी वृद्धि भी बेहतर होगी और आपकी पैदावार भी बेहतर होगी
1: जी।
0: तो पोषण का अगर हम बात करें संतुलन की, तो हमें गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए। अब वो आप बली से उसको आप कंपोस्ट किया हुआ हो या वो केड़ा से हो, या फिर आपके पास में अगर वर्मी कंपोस्ट है आपने बना रखा है तो उसका उपयोग करें, तो आपको काफी अच्छा पोषण मिलेगा।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा।
0: तो इसके साथ में ही हम देखेंगे कि कभी कभी क्या खाद अगर नहीं होता है तो पत्तियां हल्की पीली दिखाई देती है, उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है, और आप देखोगे तो कमजोर पौधा नजर आएगा।
1: बिल्कुल,
0: अगर ऐसी स्थितियां आपकी नजरों में आती है या आप खेत में देखते हैं तो आप तुरंत है जो खाद का उपयोग करें, जो देसी खाद है जिसकी हम बात करते हैं, हम परंपराओं से डलते जो आ रहे हैं वही, हमें किसी प्रकार का जो यूरिया डीएपी इस प्रकार का खाद यूज नहीं करना है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम खेत में जो पैदा होगी उसको हम खाएंगे और हम खाएंगे तो आपको रासायनिक जो है उसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आपकी जो फसल है उसके अंदर पोषण बहुत अच्छा होगा, तो इस चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है इसको आप सिर्फ निरीक्षण से पता कर सकते हैं
1: जी जी।
0: ऐसा नहीं हो कि आपने बो दी और आप 2 महीने बाद में आप जा रहे हो देखने, तो फिर वो ज्यादा प्रभावित हो जाती है
1: जी। बिल्कुल सर,
0: तो इस तरह से हमें ध्यान देने की जरूरत है
1: जी। हाँ सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, यही अब बात आती है कि पौधों की जड़ों पर किस तरीके से हमें मिट्टी चढ़ानी है, जल संरक्षण कैसे करना है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: देखिए जल संरक्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपकी फसल के लिए। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे नजर आएगा आपको कि बारिश के दिन है, लेकिन कभी क्या होता है कि बारिश लंबे समय तक नहीं आती है।
1: बिल्कुल,
0: तो नहीं आती है तो आपको ये देखने की जरूरत है कि फसल को पानी की आवश्यकता है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपकी मक्का है, पर्याप्त अगर वर्षा है टाइम से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी देखना है कि एक तो खेत का पानी कहीं बहकर तो नहीं निकल रहा है, तो आप वहाँ पे मेड़बंदी जैसे उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये ध्यान रखिए कि बहके नहीं निकले, अगर बहता है तो ये समझ लीजिए कि आपका जो मिट्टी की उर्वरकता है वो भी उसके साथ बह जाती है
1: जी जी,
0: तो फसल कमजोर होना स्वाभाविक है, तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जब हमारे मक्के के जैसे बूटे बनने लगते हैं तो बूटे बनते समय उसमें पानी की आवश्यकता होती है, अगर वर्षा नहीं आ रही है तो आपको पानी पिलाने की जरूरत है, हल्का पानी उसमें दे, आप जो नाली बनाकर उसमें पिला सकते हैं, तो नाली से क्या होगा कि आपका मक्का नुकसान नहीं हो, अगर आप पाइप से पिलाएंगे तो भी आप पिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि फसल का नुकसान ना हो और उसकी जरूरत के अनुसार उसको पानी देना है। ऐसा नहीं है कि जैसे पानी की जरूरत नहीं है, सूखी नहीं गीली है मिट्टी वो काफी मात्रा में, फिर भी आप पानी पिला रहे हो तो वो आपके लिए नुकसान भी हो सकता है
1: जी। हाँ,
0: इसके साथ में हम देखते हैं कि पानी की आवश्यकता पता कैसे करें, तो आपकी जो मिट्टी की जो नमी है आप उसको चेक करते रहें, जब भी आप खेत में जाएं तो उसकी नमी को चेक करते हैं कि कितनी गहराई तक नमी है या कितनी गहराई तक नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, उस दौरान आप जो है सुनिश्चित कर सकते हैं कि पानी देना है या नहीं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें बहुत अच्छी बातों से अवगत करवा रहे हैं, तो और कौन सी विशेष बातों का हमारे किसान भाई बहनों को मक्का की फसल में ध्यान रखने की जरूरत है
0: जी? तो एक तो जैसे हमने पहले भी बात की कि जो कीट है वो कीट जो आपकी फसल में लग जाते हैं या अन्य कोई रोग है, तो हमें क्या करना है कि समय समय पर उनको देखते रहना है, देखकर आपको जो हम नीम आधारित जो घोल बनाते हैं, नीम अस्त्र की बात करते हैं, दस पर्णी है, तो इन चीजों का उपयोग हमें करना चाहिए ताकि कीड़े हैं वो वहां से चले जाएंगे आप खेत से, तो ये जरूरी है। दूसरा है कि जैसे अगर मान लो कि पानी से या फिर आपकी जो गहराई में कम है, जैसे आप शुरुआत में देखते हैं तो मक्का की अगर जड़ें गहराई में नहीं है, बाहर निकल रही है, तो आप शुरुआत में ये भी देख सकते हैं कि वहां पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दें तो आपका पौधा है मजबूत रहेगा। और जैसे कई बार क्या होता है कि पौधे बड़े हो जाते हैं और हवा चलती तो पौधे गिर जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसी स्थिति में अगर आप मिट्टी डालते हैं तो वो आपका पौधा खड़ा रहेगा। इसी तरह जैसे हमने बात की थी कि मेड़बंदी आप कर सकते हैं ताकि आपका खाद और जो मिट्टी की उर्वरकता है वो बहकर नहीं जाए। इसके अलावा ये है कि कई किसान भाई इस दौर में अभी शुरुआत है हमारी बोने की, कई भाइयों ने बो भी दिया, किसी ने बुआई करेंगे, तो ये देखना है कि हमको हांगणी खेती की तरह उसको करना है,
1: बिल्कुल,
0: केवल मक्का मक्का नहीं लगाना है उसमें। आप जैसे अरहर है या तुअर है, उड़द है, मूंग है, भिंडी है, तो इस तरह के अगर चार पांच प्रकार के आप लगाएंगे तो इसमें ये फायदा रहेगा कि आगे जाकर आपको एक तो विभिन्न प्रकार की फसलें मिलेगी, दूसरा आपको वहां से दाल की फसलें, दाल मिल जाएगी, खाने के लिए अनाज मिलेगा, और भी जो है आप सब्जियों के, जैसे भिंडी की बात करते हैं तो आप मेड़ के चारों तरफ भिंडी लगा सकते हो, तो उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और दूसरा रोग लगने की कम संभावना होती है उसमें।
1: बिल्कुल सर,
0: तो उसमें क्या होता है कि अनेक प्रकार की फसल है तो वो जो कीट है वो बहुत कम लगेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि एक ही फसल पे वो निर्भर हो जाते हैं और वो उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाते, तो दोनों तरीके से होते हैं, जैसे हम बोलते हैं शत्रु और मित्र कीट, तो दोनों होते हैं। तो अगर शत्रु कीट है तो आप दस पर्णी और ये जो जीवामृत की हम बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं नीमास्त्र की, वो आप जरूर छिड़के ताकि वो नुकसान ना करे।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सभी श्रोतागणों को ये संदेश देना चाहूंगा कि मक्का की जो अच्छी देखभाल है वो उत्पादन का माध्यम भी है, तो आप अच्छे से देखभाल करें, समय समय पर आप खेत में जाएं और उसको बारीकी से उसका निरीक्षण करके, और जो भी प्रकार की जैसे खरपतवार है या रोग है तो उसके लिए आप जो है परंपरागत जो समाधान है वो खोजें और करते रहे ताकि आपकी फसल है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और पैदावार भी अच्छी हो।
1: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: જેમ કે ભાઈ બોનો આપણે આપણે વેસ્ટમાં માંગીલાલ જે સર જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકત કી ઘણા કની વાતે બતાડી હે, તો જેમ કે એણે આપણને બતાડ્યું કે આપણને ટેમ ટેમ માતે ખેતરમે જઈને નિરીક્ષણ કરવું હોગા, દેખવું હોગા કે આપણે મક્કાની ફસલ હરતી થઈ રહી હે, કેટલી મોટી થઈ હે, કે કીટ તો નથી લાગી ગયો, એણાનું પ્રબંધન આપણને હરતે કરવું પડેગા, ને એને સાથે જૈવિક કીટનાશકોનું પ્રયોગ આપણને હેતે કરવું હે, ને આનું શું મહત્વ હે એ બી એણે આપણને બતાડ્યું। तो आशा करो हो कि आ हंगरी वाते आपने गमी होंगा, क्योंकि भाई बोनो अभी टाइम थे गयो है आपने अनस कार्यक्रम तक सूटा पड़वानो, तो सूटा तो पड़ा पर जाते पहले आपने हमरा विदा एक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाय तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
2: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
2: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातचीत रहने वाली है सामूहिक प्रयास की शक्ति, मिलकर बदले अपना गांव। श्रोताओं कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति एक दीपक जला सकता है, लेकिन जब पूरा गांव मिलकर आगे बढ़ता है तो विकास की ऐसी रोशनी फैलती है जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: गांव केवल मकानों का समूह नहीं होता, बल्कि लोगों के सहयोग, विश्वास और साझी जिम्मेदारियों से बनता है। जब हर व्यक्ति सोचने लगे कि गांव की समस्या मेरी समस्या है और उसका समाधान मेरी भी जिम्मेदारी है, तभी सच्चे विकास का मार्ग खुलता है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसी विचार के साथ आज हम बात करेंगे सामूहिक प्रयास की शक्ति, मिलकर बदले अपने गांव को। तो बातें हम जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं सामूहिक प्रयास की शक्ति मिलकर बदले अपने गांव को। तो अंजलि, इतिहास गवाह है कि जब लोगों ने मिलकर काम किया है तब बड़े से बड़े बदलाव संभव हुआ है।
1: जी जी।
0: एक व्यक्ति अकेले बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन जब पूरा समुदाय एक लक्ष्य के लिए खड़ा हो जाता है तब परिवर्तन की नई इबारत लिखी जाती है। गांव का विकास भी किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। श्रोताओं,
1: बिल्कुल,
0: इसके लिए पूरे समाज की भागीदारी जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, एक पुरानी कहावत है, एक और एक 11 होते हैं। यह केवल कहावत नहीं है बल्कि जीवन का एक बड़ा सत्य है।
0: बिल्कुल,
1: एक व्यक्ति अकेले कुछ सीमित कार्य कर सकता है, लेकिन जब अनेक लोग एक लक्ष्य, एक सोच और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो असंभव दिखाई देने वाला कार्य भी संभव हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: यही सामूहिक प्रयास की शक्ति है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव भारत की आत्मा है। हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, खेती, लोक कला और सामाजिक मूल्यों की जड़ें गांव में ही बसती हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि जागृति जी गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। लेकिन गांव का विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं होगा, इसके लिए गांव के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि गांव केवल घरों का समूह नहीं होता, ये संस्कारों, परंपराओं, रिश्तों, सामूहिक जिम्मेदारियों का केंद्र होता है। जैसा कि अभी आपने बताया भी था, यदि गांव का प्रत्येक व्यक्ति सोच ले कि मेरे गांव की प्रगति मेरा भी योगदान है तो विकास की गति कई गुना बढ़ सकती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, सामूहिक प्रयास का मतलब यानी कि मिलजुल कर सहयोग करना, समर्पण के साथ किसी साझा उद्देश्य को पूरा करना। ये भावना हमें सिखाती है अंजलि कि समाज की समस्या केवल किसी एक की नहीं बल्कि हम सभी की है, इसीलिए उनके समाधान में भी सबकी भागीदारी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज हम अक्सर विकास की बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में अच्छी सड़कें हो, स्वच्छ वातावरण हो, पर्याप्त पानी हो और बेहतर शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, रोजगार के अवसर भी बढ़े।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोता साथियों, हमें ये भी समझना होगा कि विकास केवल मांगने से नहीं आता है, विकास के लिए भागीदारी भी जरूरी होती है। सामूहिक प्रयास का अर्थ, जैसा कि जागृति जी आपने भी बताया था, कि गांव का हर व्यक्ति अपने गांव के प्रति जिम्मेदारी महसूस करे। जब लोग यह सोचते हैं कि यह मेरा गांव है और इसकी उन्नति में भी मेरा ही योगदान होना चाहिए, तभी गांव के बदलाव की शुरुआत होती है।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा स्वराज भी यही सिखाता है कि केवल अधिकारों की बात न करें बल्कि अपने कर्तव्य को भी समझें। स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मनिर्भरता, सहभागिता और जिम्मेदारी है। जब जागृति जी जनता स्वयं विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनती है तब स्वराज मजबूत होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज के समय में गांव बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कहीं पानी की कमी है, कभी स्वच्छता की समस्या है, कहीं बेरोजगारी है, तो कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन समस्याओं का स्थायी समाधान तभी संभव है जब पूरा गांव मिलकर आगे आएगा। सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का नाम नहीं है श्रोताओं, बल्कि सच्चा स्वराज वो स्थिति है जहां लोग स्वयं अपने विकास की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। जब नागरिक केवल अधिकारों की बात नहीं करते बल्कि कर्तव्यों का भी पालन करते हैं, तभी स्वराज का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि किसी भी गाँव का विकास पंचायत भवन या सरकारी योजनाओं से नहीं होता। विकास तब होता है जब गांव का हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझता है।
1: बिल्कुल,
0: जब किसान, मजदूर, शिक्षक, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग के साथ मिलकर कार्य करते हैं तब परिवर्तन की मजबूत नींव तैयार होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि किसी भी गांव की सबसे बड़ी पूंजी उसके लोग होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि लोग जागरूक, एकजुट और सकारात्मक सोच वाले हों तो सीमित संसाधनों में भी बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। लेकिन यदि जागृति जी समाज बिखरा हुआ हो, आपसी मतभेद उलझे हों, तो हम देखते हैं कि अच्छे संसाधन भी विकास नहीं ला सकते।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए दोस्तों आज हमें अपने गांव में सहयोग, सहभागिता की संस्कृति को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि गांव की समस्या किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है बल्कि पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है सामूहिक प्रयास की शक्ति मिलकर बदले अपने गाँव को, ते बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी हमने गीत से पहले जाना था कि आज हमें अपने गांव में सहयोग और सहभागिता की संस्कृति को मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि दोस्तों गांव में गंदगी है तो इसका प्रभाव हर परिवार पर पड़ता है। यदि पानी की कमी है तो उसका असर सभी पर होता है, और यदि शिक्षा कमजोर है तो पूरा समाज पीछे रह जाता है। इसलिए समाधान भी सामूहिक ही होना चाहिए। स्वच्छता इसका एक अच्छा उदाहरण है। यदि केवल कुछ लोग सफाई रखें, बाकी लोग लापरवाही करें तो गांव स्वच्छ नहीं बन सकता। लेकिन जब पूरा गांव स्वच्छता को अपना कर्तव्य मान लेता है तब बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, हम युवाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहती है। युवा किसी भी समाज की ऊर्जा और शक्ति होते हैं अंजलि। युवाओं के पास नई सोच होती है, उत्साह होते हैं, बदलाव होती है और कुछ कर गुजरने की इच्छा भी होती है। यदि गांव के युवा शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल जागरूकता जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो गांव की तस्वीरें बदल सकती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आज आवश्यकता इस बात की कि युवा केवल नौकरी की तलाश तक सीमित न रहे बल्कि समाज निर्माण में भी अपना योगदान दे। गाँव में पुस्तकालय, खेल गतिविधियाँ, नशा मुक्त अभियान और कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं की पहल से सफल हो सकते हैं। महिलाएं भी गांव के विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला है। किसी भी समाज की प्रगति तब तक अधूरी रहती है जब तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित न हो।
0: बिल्कुल,
1: स्वयं सहायता समूहों ने देशों के अनेक गांवों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव की नई कहानियां भी लिखी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज स्वयं सहायता समूह ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। महिलाएं बचत, उद्यमिता, शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। श्रोता साथियों, जब महिलाओं को अवसर और सम्मान मिलता है तो वे पूरे समाज का विकास कर पाती है। शिक्षा भी सामूहिक प्रयास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि गांव का प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तो समाज का भविष्य मजबूत हो सकता है। शिक्षा केवल जागृति जी रोजगार का माध्यम नहीं होती, शिक्षा व्यक्ति को जागरूक बनाती है, सोचने की क्षमता को विकसित करती है और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए शिक्षा के प्रति समाज की सामूहिक जिम्मेदारी आवश्यक है।
1: जी हाँ अंजलि, जैसे कि जल, जंगल और जमीन हमारे जीवन का आधार है, इनकी रक्षा केवल सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं है। यदि पूरा गांव मिलकर जल संरक्षण करे, वृक्षारोपण करे, पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प ले तो आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती भी बन चुका है। श्रोताओं, ऐसे समय में गांव की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी बन चुका है अंजलि।
0: बिल्कुल,
1: गांव की असली ताकत उसकी सामाजिक एकता में छिपी होती है। जब लोग जाति, धर्म, वर्ग और व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर समाज हित में कार्य करते हैं तब विकास की राह आसान हो जाती है। आपसी विश्वास और सहयोग किसी भी समुदाय की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, आज पलायन भी गांवों की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। रोजगार और सुविधाओं की कमी के कारण अनेक लोग शहरों की ओर जाते हैं, लेकिन यदि गाँव में ही स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग किया जाए तो कृषि को मजबूत बनाया जा सकता है, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। श्रोता साथी, स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास न केवल रोजगार बढ़ाता है बल्कि आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करता है और यही सच्चे स्वराज का मार्ग है। पंचायतें लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन पंचायत तभी प्रभावी बनती है जब जनता सक्रिय रूप से उसमें भाग लेती है।
1: बिल्कुल,
0: ग्राम सभाओं में भाग लेना, सुझाव देना, योजनाओं की जानकारी रखना और विकास कार्यों की निगरानी करना नागरिकों की ही जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग सामूहिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। हम देखते हैं कि गांव में कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान, ये सारी अनेक संभावनाएं मौजूद है। यदि इनका सामूहिक रूप से विकास किया जाए तो रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और पलायन की समस्या भी कम हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की सबसे मजबूत नींव जनता की सहभागिता होती है।
0: बिल्कुल,
1: जब लोग स्वयं आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाते हैं तब योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहती बल्कि धरातल पर भी दिखाई देती है। तो श्रोता साथियों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि सच्चा स्वराज हमें यही बताता है कि हम अपने गाँव, समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बने। केवल समस्याओं की चर्चा करने से बदलाव नहीं आता, बदलाव तब आता है जब हम समाधान का हिस्सा बनने का निर्णय लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम अपने गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें, पर्यावरण की रक्षा करें, शिक्षा को बढ़ावा दें और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत बनाएं, क्योंकि जब पूरा गांव एक दिशा में चलता है तब सफलता उसके कदम चूमती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि मिलजुल कर जब बढ़ते हैं कदम, बदल जाता है गाँव का हर मौसम। सामूहिक प्रयास बने पहचान, खुशहाल हो अपना गांव, जन जन की भागीदारी हो खास, तभी साकार होगा सच्चा स्वराज।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में बस आपसे ये कहना चाहेंगे कि गांव का भविष्य किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, बल्कि पूरे समुदाय की एकजुटता में छिपा है। यदि हम मिलकर प्रयास करें अंजलि, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। इसीलिए श्रोताओं, मई से हम की यात्रा तय करें और अपने गांव को विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाइए।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी जो बातचीत रही है सामूहिक प्रयास की शक्ति को लेकर, वो हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है मौसमी बीमारियां और उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर।
0: बिल्कुल
1: कशिश, हम देखते हैं कि बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली, ठंडी हवाएं और प्रकृति की सुंदरता लेकर आता है। यह मौसम खेतों, पेड़ पौधों, जल स्रोतों के लिए जीवनदायी माना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जितना यह मौसम प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाता है उतना ही स्वास्थ्य के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है।
0: जी जी,
1: वर्षा के कारण हम देखते हैं कशिश कि वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जगह जगह पर पानी जमा हो जाता है और गंदगी और कीटाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: यही कारण है कि इस मौसम में संक्रामक रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो आज कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानेंगे कि किस तरीके से मौसमी बीमारियां जो होती हैं उनका हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से हमें समाधान के उपाय खोजने होंगे।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें करने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि मौसमी बीमारियों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर बात करें

0: बरसात के मौसम और स्वास्थ्य के संबंध को लेकर, तो जैसा कि वर्षा होने पर तापमान में बदलाव आता है और वातावरण में भी आर्द्रता बढ़ जाती है।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, ये जो नमी होती है बरसात की, वो बैक्टीरिया, फफूंद और मच्छरों के तेजी से बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। इसके अलावा अंजलि जी, कई स्थानों पर पानी बढ़ने के कारण दूषित पानी पीने और गंदगी फैलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। जब श्रोता साथियों दूषित पानी और भोजन शरीर में प्रवेश करते हैं, तब कई प्रकार की पेट संबंधित बीमारियां फैलने लगती हैं।
1: बिल्कुल,
0: वहीं हम देखते हैं कि ठहरे हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां भी हमें हो जाती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही अब बात करें कि बरसात में सबसे अधिक होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। तो श्रोता साथियों, बरसात के मौसम में सबसे आम बीमारी वायरल फीवर होता है। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी, गले में खराश और कभी कभी खांसी भी हो जाती है। अधिकांश मामलों में कशिश, पर्याप्त आराम, हल्का भोजन और चिकित्सीय सलाह से मरीज जल्दी ठीक होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ हम देखते हैं कि डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडिस मच्छर के काटने से होती है। यह मच्छर साफ और रुके हुए पानी में पनपता है। इसके प्रमुख लक्षण है जैसे कि तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, शरीर और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर लाल चकते होना और प्लेटलेट्स का कम होना।
0: बिल्कुल
1: साथियों, डेंगू में स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत चिकित्सीय संपर्क करना बहुत जरूरी होता है। समय पर उपचार मिलने से गंभीर स्थितियों से बचा जा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के आगे अगर बात करें मलेरिया की, तो हम देखते हैं कि मलेरिया श्रोता साथियों मादा एनिफेरिस मच्छर के काटने से फैलता है। इसके कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि ठंड लगकर तेज बुखार आना, पसीना आना, सिर दर्द की समस्या अंजलि जी, कमजोरी और उल्टी।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, यदि समय पर इसका इलाज नहीं होता है तो यह बीमारी गंभीर रूप भी ले सकती है। साथ ही चिकनगुनिया भी एक बीमारी फैलती है अंजलि जी बरसात के मौसम में।
1: बिल्कुल,
0: ये भी मच्छरों के द्वारा ही फैलती है। इसमें श्रोता साथियों, व्यक्ति को तेज बुखार आता है, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, शरीर में अकड़न आ जाती है, थकान महसूस होती है और कमजोरी बनी रहती है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ कशिश अब बात करते हैं टाइफाइड की। तो श्रोता साथियों, बरसात में दूषित पानी और भोजन के कारण टाइफाइड का खतरा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: मुख्य लक्षण जैसे कि लगातार बुखार रहना, भूख कम लगना, पेट दर्द, कमजोरी, सिर दर्द, इससे बचने के लिए केवल साफ पानी पीना और ताजा भोजन करना ही आवश्यक होता है। हेजा श्रोता साथियों, प्रदूषित पानी से फैलने वाली गंभीर बीमारी होती है।
0: जी जी,
1: इसमें हम देखते हैं कशिश के मरीज को बार बार दस्त लगते हैं, उल्टी आती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, कमजोरी, चक्कर आना, और यदि सही समय पर उपचार न किया जाए तो रोगी की स्थिति गंभीर भी हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, ये कुछ ऐसी मौसमी बीमारियां हैं जिनका हमें समय रहते ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसा कि कशिश बातें कार्यक्रम में बहुत अच्छी चल रही है हमारी श्रोता साथियों से, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ दिले जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि कशिश, हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना था कि किस तरीके से मौसमी बीमारियों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें हमने गीत से पहले हैजा बीमारी के बारे में जाना, यही बात करें दस्त और फूड पॉइजनिंग की, तो श्रोता साथियों, बरसात में खुले में रखे खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: ऐसे भोजन के सेवन से दस्त, उल्टी, पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए कुछ लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जैसे कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीज। साथ ही जो कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता वाले व्यक्ति होते हैं अंजलि जी, उन्हें भी इस मौसम में सतर्क रहने की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस मौसम में इन व्यक्तियों को संक्रमण जल्दी फैल सकते हैं और गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं।
0: जी जी।
1: इसलिए हमें कुछ उपाय अपनाने की आवश्यकता है। जैसे कि हमें उबला हुआ, फिल्टर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए। ताजा और घर का बना भोजन ही करना चाहिए अंजलि जी। साथ ही खुले में बिकने वाले जो फास्ट फूड होते हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना है।
0: बिल्कुल।
1: खाने से पहले और शौच के बाद श्रोता साथियों साबुन से हाथ धोए, घर के आसपास पानी जमा न होने दे, और इसी के साथ ही पूरी बांह के कपड़े आप पहने।
0: बिल्कुल।
1: रोजाना हल्का व्यायाम करें और पर्याप्त रूप से नींद लें।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यह कहा जा सकता है कि बरसात का मौसम प्रकृति की सुंदरता, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यह मौसम स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त सतर्कता की मांग भी करता है। थोड़ी सी लापरवाही कई प्रकार की मौसमी और संक्रामक बीमारियों को जन्म दे सकती है। जैसे कि हम कार्यक्रम के माध्यम से जान ही पाए कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार, टाइफाइड, हैजा, दस्त और त्वचा संबंधी जो संक्रमण है, वो मुख्य बीमारियां होती हैं इस मौसम की।
1: बिल्कुल।
0: जो कि गंदगी, दूषित पानी, अस्वच्छ खान पान और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के कारण फैलती है। इसलिए इनसे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है स्वच्छता, जागरूकता और समय पर उपचार।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, ये याद रखना आवश्यक है कि स्वस्थ समाज की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति से होती है। यदि हम अपने घर, आंगन, मोहल्ले और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, कहीं भी पानी जमा नहीं होने दें, केवल स्वच्छ और सुरक्षित पानी का प्रयोग करें, ताजा और पौष्टिक भोजन करें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं, तो अधिकांश मौसमी बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: बीमारी होने पर घरेलू उपचार या स्वयं दवा लेने के बजाय योग्य चिकित्सक से सलाह लेना ही समझदारी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। इसी के साथ दोस्तों, अगर बात करें तो कहना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कि बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है अंजलि जी कि वे एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर उसे नजरअंदाज न करें।
0: जी हाँ।
1: समय पर जांच और उपचार न केवल रोगी को स्वस्थ बनाता है बल्कि संक्रमण को फैलने से भी रोकता है साथियों।
0: जी जी।
1: ऐसे में सामुदायिक स्तर पर भी हमारी जिम्मेदारी कम नहीं है। यदि अंजलि जी पूरा समाज मिलकर स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता को अपनाए, तो बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, एक जागरूक नागरिक ही केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का स्वास्थ्य सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: बिल्कुल कशिश, इस वर्षा ऋतु में हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, स्वच्छता को अपनी आदत बनाएंगे, सुरक्षित खान पान अपनाएंगे, पर्यावरण को साफ रखेंगे और स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारी को अपने परिवार, समाज तक पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि रोग होने के बाद उपचार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है रोगों की रोकथाम करना। यदि हम सावधानी, स्वच्छता और जागरूकता को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो बरसात का मौसम केवल आनंद, ताजगी और खुशियों का मौसम बन जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आज के समय में यह समझना आवश्यक है कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों या दवाइयों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी दिनचर्या, हमारी आदतों और हमारे वातावरणों पर भी समान रूप से निर्भर करता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि घर के आसपास पानी जमा न होने दिया जाए, कचरे का सही निस्तारण किया जाए, मच्छरों के प्रजनन को रोका जाए और स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए, तो कई संक्रामक रोगों के खतरे से हम बच सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बरसात के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं की देखभाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए कशिश हमें। उन्हें पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम, साफ पानी और समय पर स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
0: और यही सारी चीजें उनकी सुरक्षा के लिए कई आवश्यक है। बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय श्रोता साथियों, तुरंत चिकित्सक से सलाह लेना ही बुद्धिमानी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। तो ऐसे में कार्यक्रम के अंत में हम हमारे साथियों से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों बरसात का आनंद तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य हमारे साथ हो। इसलिए सावधानी अपनाइए, स्वच्छता बनाए रखिए, जागरूक रहिए श्रोता साथियों, और अपने परिवार और समाज को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करिए।
0: बिल्कुल,
1: स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ा धन है अंजलि जी, और उसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं, और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी,

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में।

0: भाइयों बहनों, जरूर ग्राम सभा में बोले बोले हैं तो फैसला मजबूत थल है। वन अधिकार सिर्फ कानून न तो माँ जंगल थकी जरूर बोले में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे है ये उन्होंने रक्षा करा है। तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास में असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हिती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर मंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।